सफलता किसे कहते हैं? जिंदगी में कामयाबी का हिसाब कैसे करते हैं आप? पद से, पहचान से, पैसे से या पुरस्कार से? किसने कितना कमाया उससे, या किसने कौन सा मुकाम हासिल किया उससे, या फिर किसने कितनों को सपने देखने की वजह दी, कितनों को खुद पर यकीन करना सिखाया, कितनों को अपने देश पर गर्व करने का मौका दिया। कुछ हफ्ते पहले चोट से जूझती ट्रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद पुलेला की बैडमिंटन जोड़ी को शायद ये लगने लगा होगा कि 2026 उनके करियर का सबसे नाकाम साल है। इंजरी के चलते ना एशियन बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा ले सके, ना प्रतिष्ठित उबर कप में, लेकिन BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 में उम्मीदों के विपरीत भारत के लिए मेडल जीत उन्होंने इतिहास रच डाला। भारतीय फैंस ने बुधवार को लक्ष्य सेन की हार देखी, गुरुवार को देश की दुलारी पीवी सिंधु और

0: युवा सितारे आयुष शेट्टी को टूर्नामेंट से बाहर होते देखा। शुक्रवार को अपना क्वार्टर फाइनल मैच हार गोल्डन बॉयज की जोड़ी यानी सात्विक साईराज रांकी रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पदक की दौड़ से बाहर हो गए। इसके बावजूद शनिवार को नई दिल्ली का इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। आठ हजार से ज्यादा दर्शक रीसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की उस जोड़ी को देखने आए थे जिन्हें टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले कोई उम्मीदवारों की गिनती में भी नहीं रख रहा था। आखिर शुक्रवार को इन्होंने 15 साल के लंबे इंतजार के बाद वुमेन्स डबल्स में भारत के लिए पदक सुनिश्चित किया था। पिछली बार ये कारनामा 2011 में अश्विनी पुनप्पा और ज्वाला गुट्टा ने किया था जिनको ट्रीसा अपना रोल मॉडल मानती हैं।
1: They are one of the idols for us, the women's doubles that they made created histories in India.
0: BWF World Championships 2026 में ट्रीसा और गायत्री का खेल देख अश्विनी पुनप्पा भी प्रभावित हुई। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया से हुई खास बातचीत में उन्होंने कहा,
1: Both Gayatri and Trisa can rotate well. Gayatri has smart smashes that she plays from the back of the court. Incredibly sharp at the net. Trisa, powerhouse from the back of the court. Moves into the net. Also can take the pace off from the net. Overall game, very solid from both Gayatri and Trisa.
0: शायद सफलता का एक पैमाना ये भी है, जब आपके आदर्श आपके गुणगान गाने लगे तो कामयाब हैं आप। हालांकि सेमीफाइनल में पहली वरीयता प्राप्त टान निंग और ल्यू शेंग शू की जोड़ी के सामने भारतीय जोड़ी अंडरडॉग थी।
2: From China, ल्यू शेंग शू and टान निंग।
0: लेकिन शायद वो क्वार्टर फाइनल में अपने से कई ज्यादा मजबूत चीनी जोड़ी को हराने वाली ट्रीसा और गायत्री की परफॉर्मेंस थी जिसने भारतीय फैंस की उम्मीदें परवान चढ़ा रखी थी। बार बार स्टेडियम पुलेला पुलेला जॉली गुड के नारों से गूंजता। और गड़गड़ाती तालियों के बीच इन्होंने शुरुआत भी ऐसी ही की, 7-2 से प्रतिद्वंदियों को पिछाड़ा। लेकिन टान और ल्यू की चीनी जोड़ी जिसका लोहा दुनिया मानती है कहां पीछे रहने वाली थी। 9 पॉइंट लगातार हासिल कर उन्होंने मैच का रुख बदला और ऐसी चीख पुकार के साथ हर पॉइंट का जश्न मनाया जो छत से उतरती भारतीय फैंस की खामोशी को चीरती चली गई। दर्शकों ने फिर भी गायत्री और ट्रीसा का उत्साहवर्धन करना नहीं छोड़ा। और भारतीय जोड़ी ने वापसी भी की। 24 मिनट तक चला ये पहला सेट किसी अम्यूजमेंट पार्क के रोलर कोस्टर जैसा था, उतार चढ़ाव से लबरेज। अंततः गायत्री और ट्रीसा ने इसे 21-18 से जीत 1-0 की बढ़त हासिल की।
3: Playing with this Chinese players, I feel like we were a bit more confident in the first game. Even when we were leading in the first half, then they covered into 11-7, they just took the break. And again, we covered them. We catch the scoring close to them. I think that time we were much more confident and we were trailing them.
0: दूसरा सेट भी उसी तर्ज पर शुरू हुआ। मिड गेम ब्रेक तक गायत्री और ट्रीसा 11-10 से आगे थीं, पर फिर जैसे उफनती नदी अचानक सूखने लगी, रफ्तार भी थमती चली गई। अभी तक कुछ बेहतरीन क्रॉस कोर्ट ड्रॉप शॉट्स का मुजाहिरा कर पॉइंट्स जीतने वाली ट्रीसा से उन्हीं शॉट्स को खेलने में गलतियां होने लगी।
3: बट इन द सेकंड गेम वी डिडंट गेट द रिदम। आई फील लाइक इन द आफ्टर द सेकंड गेम सेकंड हाफ आई फील लाइक दैट टाइम द फ्यू मिस्टेक दैट मेड अस लिटिल बिट अनकॉन्फिडेंट। आई फील लाइक लिटिल बिट काइंड ऑफ डाउटफुल अबाउट एवरी स्ट्रोक्स व्हाट वी आर प्लेइंग। आई फील लाइक या
0: गायत्री से भी कुछ मौकों पर चूक हुई।
4: वो लोग काफी पेशेंटली खेले, वी कुडंट मैच बोथ ऑफ दोस थिंग्स। थोड़े पॉइंट्स ऐसे थे जो हम कन्वर्ट कर सकते थे पर रिदम नहीं आया।
0: और चीनी जोड़ी ने भरपूर फायदा उठाते हुए 21-13 से दूसरी गेम जीत मैच में बराबरी हासिल की। तीसरी गेम में टान और ल्यू ने दिखाया कि वो क्यों वर्ल्ड रैंक नंबर 1 है और 21-8 से उसे जीत फाइनल का टिकट बुक कर लिया। कोच गोपीचंद पुलेला कोर्ट साइड पर मौजूद थे। मैच के बाद उन्होंने माना कि उनकी शिष्याओं से गलतियां हुई, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया कि चीनी जोड़ी ने बेहतरीन खेल दिखाया।
5: Still the second game mid part they were quite there in the match and suddenly they didn't contact the shuttle as much and then they just lost it. But also credit to the Chinese girl.

0: angles because they were serving very well because there was a good amount of spin and tumble on the serve. And then on the first return, they were hitting very hard on the parallel. So I think Gayathri's and Teresa's chance of getting on the attack from the very beginning was not happening. But overall, happy with the way they've played.
1: जब चीनी जोड़ी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि रणनीतिक रूप से तो वो इस मुकाबले के लिए तैयार थे ही, पर उसके साथ भारतीय फैंस की जनगर्जना का भी उन पर कुछ ज्यादा असर हुआ
2: नहीं।
3: Currently play with them. We had to make specific plans, strategies to play against them. They will get support from the like home crowd. So it was a very normal thing for them.
1: Teresa और Gayathri को भले ही कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा हो, उनके इस एकमात्र पदक ने भारत के लिए एक कमाल का कीर्तिमान स्थापित किया है। 2011 से हर साल BWF World Championships में कम से कम एक पदक जीतने वाले सिर्फ दो देश हैं, चीन और भारत। और कितने युवाओं को सपने देखने की वजह दी है, कितनों के दिलों में उम्मीद जगाई है, ये हौसला दिया है कि वो भी विश्व स्तरीय मंच पर कुछ कर सकते हैं, उसका कोई माप नहीं। शायद इसलिए इस हफ्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा भी भारतीय सरकार ने की है।
4: Being into that club, I feel like so happy. There is a lot of journey we have in future. I feel like this is just a start. We just needs to take this as a positive and in a confidence way. I feel like this all moments and getting this medal and even that Arjun Award this week when they announced, I feel like that also give us some other boost in this tournament.
1: इस कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण कोरिया की बेक हाना और ली सो ही की जोड़ी ने जीत हासिल कर फाइनल में प्रवेश पाया है। वहीं पुरुषों के सिंगल्स में पहला सेट हारने के बाद फ्रांस के एलेक्स लानियर ने मजबूत वापसी की और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के फाइनल में पहुंचने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बन गए। लेकिन फाइनल से पहले जज्बातों में बह जाने और जश्न मनाने से एलेक्स ने साफ इनकार कर दिया।
5: I mean, I don't feel that emotional at the moment. I think I'm a little bit too tired, but I'm also proud of the way I managed that match. Also, mentally, I'm not really thinking how big it is. We haven't done the tournament yet, so definitely I'm still in the tournament, and I don't want to think about any kind of historical aspect or anything.
1: उनसे हारने वाले विक्टर लाई को कांस्य पदक मिला है, जो उनका वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में दूसरा पदक है।
6: Of course, I'm really proud to have another world's medal. Not everyone can say that they have two, so I'm really proud. First of all, hopefully, we're inspiring some young kids from our countries.
1: Alex का सामना फाइनल में जापान के कोडाई नारोका के साथ होगा। महिलाओं के सिंगल्स में जापान की अकाने यामागुची और दक्षिण कोरिया से आने वाली मौजूदा ओलंपिक चैंपियन आन से युंग आमने सामने होंगी। पुरुषों के डबल्स में खिताबी भिड़ंत में होंगे मौजूदा ओलंपिक चैंपियन मलेशिया के एरन चिया और सो वुई यिक। उनसे भिड़ेंगे भारतीय प्रशंसकों का दिल तोड़ देने वाले चीन के लियांग और वांग। मिक्स डबल्स में फ्रांस के गिक्वेल और डेलरू की जोड़ी चीन की फेंग और हुआंग की जोड़ी से भिड़ेगी। प्रोड्यूसर शाहनवाज खान और एडिटर वंदना के साथ इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम से मोहम्मद शाहिद आजमी की रिपोर्ट लिए मैं दर्पण टिकिया।

0: मन की बात के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कैच द रेन अभियान की चर्चा की थी। मैंने आग्रह किया था कि बारिश की हर बूंद को सहजने के इस अभियान को जन आंदोलन बनाएं। कैच द रेन का संदेश बहुत सीधा है, जहां बारिश गिरे, जब बारिश गिरे, पानी को वहीं सहेजिए। इसलिए 4 जुलाई से देश भर में एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इसके तहत बारिश के पानी के संचयन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पुराने जल स्रोतों के पुनर्जीवन और वृक्षारोपण को नई गति दी जा रही है। मुझे बहुत खुशी है कि गांव हो या शहर, पंचायतें हो या सामाजिक संस्थाएं, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। कहीं पुराने तालाबों से घाट निकाली जा रही है, कहीं कुआं और बावड़ियों को फिर से जीवन दिया जा रहा है, बंद पड़े बोरवेल अब ग्राउंड वाटर रिचार्ज का माध्यम बन रहे हैं। साथियों, मध्य प्रदेश के सीधी जिले में करीब 1500 तालाब बनाए गए हैं। नरसिंहपुर में अमृत सरोवरों को संवारा गया है। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ी मात्रा में पानी सहेजने की क्षमता विकसित हुई है। आंध्र प्रदेश के नंदियाल में सभी ग्राम पंचायतें इस अभियान से जुड़ी है और पुराने तालाबों को फिर से उपयोगी बनाया गया है। हमारे शहर भी पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ के कोरबा, उड़ीसा के भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम इस अभियान के उत्साहजनक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। आइए हम भी अपने आसपास किसी एक तालाब, कुएं या बावड़ी की जिम्मेदारी लें, पानी की हर बूंद बचाएं। आज बचाई गई हर बूंद आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, ये दोहे की केवल एक पंक्ति नहीं बल्कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भाग्य तय करने वाला सच है। पानी जो हमारी प्यास बुझाता है, फसलों में जान डालता है और जीवन का आधार बनता है। लेकिन ये भी सच है कि अगर यही पानी, यही जल धीरे धीरे हमारी जमीन से गायब होने लगे तो सब तबाह होना शुरू हो जाएगा। इसी जल संकट को दूर करने और हमारी आने वाली पीढ़ियों के कल को सुरक्षित करने के लिए शुरू हुआ एक अनूठा अभियान, मिशन अमृत सरोवर। अमृत सरोवर केवल पानी का तालाब या पोखर नहीं है, बल्कि ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, सामुदायिक एकता और जल संरक्षण की एक नई क्रांति है। देश के हर जिले में 75 ऐसे तालाबों का पुनरुद्धार और निर्माण किया जा रहा है, जो भूजल स्तर को बढ़ाने के साथ साथ हमारे गांवों को एक नया जीवन दे रहे हैं। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता। ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई है।
2: श्रोताओं, बहुत बहुत नमस्कार, मैं हूं प्रशांत परमार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण, कैच द रेन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के महत्व को बताते हुए देश भर में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों का जिक्र करते हुए नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संवर्धन और पुनर्जीवन की सराहना की। प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय मंच से जिले के कार्यों का उल्लेख किया जाना निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले के लिए गौरव और सम्मान का विषय है। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे विशेषज्ञ अतिथियों को आज आमंत्रित किया है। श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद।
2: रजनी मैम, अमृत सरोवर का जब जिक्र होता है तो एक छवि हमारे मानस पटल पर बनती है, साफ स्वच्छ पानी से लबालब भरे हुए तालाबों की, सरोवरों की। और जब स्वयं प्रधानमंत्री जी मन की बात कार्यक्रम में इसका उल्लेख कर रहे हों तो हम विस्तार से जानना चाहेंगे कि अमृत सरोवरों के संवर्धन, जल संरक्षण, जल स्रोतों के संवर्धन के लिए आपने किस प्रकार कार्य किया, किस प्रकार इसकी योजना तैयार की गई और कैसे इस पूरे अभियान को अंजाम दिया गया।
4: पिछले कई वर्षों से लगातार भारत सरकार के द्वारा और मंत्री शासन द्वारा जल संरक्षण को लेकर कई प्रयास किए जा रहे हैं। उसी तारतम्य में JSJB जल संचय जन भागीदारी अभियान और मंत्री शासन का जल गंगा संवर्धन अभियान, ये प्रारंभ किए गए हैं। इन्हीं दोनों अभियानों के अनुक्रम में जिले में अमृत सरोवरों का ये काम प्रारंभ हुआ था और पिछले 2 वर्षों में लगभग 63 अमृत सरोवर जिले में निर्माण किए गए। इन जो अमृत सरोवर बनाए गए हैं उनमें, क्योंकि समय के साथ आप देखते हैं कई बार गाद भर जाती है या थोड़ा जल स्तर कम हो जाता है, तो इनका संरक्षण किया जाना, लगातार इनमें जल भराव इसका मेंटेन रहे, ये सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो इस वर्ष हम लोगों ने जब

0: जल संचय, जन भागीदारी का काम और कैच द रेन कैंपेन जो भारत सरकार ने शुरू किया उसके अंतर्गत जो हमने कुछ काम लिए उसमें अमृत सरोवरों को मुख्य रूप से लिया गया, क्योंकि अमृत सरोवर के जो साइज होते हैं वो उस क्षेत्र में एक बड़ा जल भराव का सेंटर होता है और उस क्षेत्र में जल का हम कहें संग्रहण का एक अच्छा माध्यम बनता है। वो हम लोगों ने प्लानिंग की कि पहले हमने चिन्हित किए कि कितने हमारे पास अमृत सरोवर बने हुए हैं और हमारे जो कुछ अपूर्ण थे उनको पूर्ण करना, हम उनको पूर्ण कर पाए और जो निर्मित हो गए हैं उनमें गांध निकासी करके उनकी जल भराव क्षमता को मेंटेन करें। तो हम लोग लगभग जनवरी फरवरी में इसकी कार्ययोजना बनाई और इसके साथ ही जैसे मैंने कहा कि जल संचय जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत हमने जो हमारे खेत तालाब जो भी एक तरह के सरोवर होते हैं जो छोटी साइज के रहते हैं, तो खेत तालाब लगभग हमने 1100 खेत तालाबों की योजना बनाई जिन्हें हमें पूर्ण करना था। और इन दोनों ही जो हम अगर तालाबों की बात करें तो दोनों ही कार्यों में लगातार प्रयास करके हम लोगों ने जून तक सभी एक तो कार्य पूर्ण किए जो अधूरे थे और जिसकी क्षमता कम हो गई थी उनको उनकी जल भराव क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया, जिससे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य ध्येय वाक्य होता है कि कैच द रेन वेयर इट इज जो है उसको लेके हमने प्रयास किया कि हम उसको चरितार्थ कर पाए और अधिक से अधिक वर्षा जल को संचय कर पाए अपने जिले में।
1: जी गजेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे अभियान में, इस पूरे जल संरक्षण और अमृत सरोवर के अभियान में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी बाधा क्या रही मैदानी स्तर पर नरसिंहपुर जिले में कार्य करते हुए, जब आपने जल संरक्षण का कार्य और अमृत सरोवरों का संवर्धन का कार्य शुरू किया, सर आपसे जानना चाहेंगे।
2: देखिए, जहां तक जल संरक्षण के कार्यों में समाज के रुख का प्रश्न है, थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं धारणा है कि कोई काम अगर सरकार नीत है तो वो काम सरकार के नुमाइंदे ही करेंगे, एक ऐसी धारणा है। तो कम्युनिटी एंगेजमेंट जो हम समझते हैं कि जल के विषय में तो अनिवार्य आवश्यकता है। हम बिना समाज के, बिना स्थानीय संसाधनों के, मानव प्रबंधन के, महिलाओं के, युवा साथियों के नहीं किया जा सकता। तो जब हमने इन जल इकाइयों के निर्माण या कि उनकी पूर्णता का विषय रखा तो सहज रूप से जो एक पहला रहता है कि खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो परखते हैं, थोड़ा देखते हैं कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं, वो उसमें औपचारिकता है या वास्तविक रूप से आप उसमें अपना इनपुट दे रहे हैं, तो लोग धीरे धीरे शामिल हुए। और पहले उनकी जो जिज्ञासा थी वो कुछ प्रश्नों के रूप में थी, लेकिन वो बाद में कहीं ना कहीं समागम के रूप में और साहचर्य के रूप में आती चली गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं कि गोटेगांव जनपद में मेख में एक तालाब था, लगभग 1959 में वो वहां के कुछ परिवारों ने दान दिया था जल संरक्षण इकाई के लिए। बाद में वो फिर अतिक्रमण होके और उसमें खेतियां होती रही, लेकिन इसी अभियान में जब उसको लिया गया और गांव ने ही सहयोग करके उस पूरे 21 एकड़ को एक जल इकाई के रूप में, सरोवर के रूप में विकसित किया। और ये जल संरक्षण के जो कार्य हैं, न केवल ये केवल भौतिक उपागम है या कि जल ही रोक रहे हैं, लेकिन समाज को भी कहीं ना कहीं जोड़ रहे हैं, एक महत्वपूर्ण बात यह है।
1: एक प्रशासक के तौर पे क्या चुनौतियां रही आपके लिए?
2: एक तो नरसिंहपुर के लिए अगर हम बात करें, नर्मदा जी का कछारी क्षेत्र है, परंपरागत रूप से इसमें जल का स्तर रहा है, वो भूमिगत जल का स्तर काफी अच्छा रहा, लेकिन इधर धान, गेहूं और आपके गन्ने की फसल जो कि थोड़ा सा ज्यादा पानी की खपत करते हैं, उनके लगातार उपयोग से और बोरिंग की अधिकता के कारण जिले में जल का स्तर बहुत तेजी से डिप्लीट किया है। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ खेती में कई कई दफे एक एक किसान के पास छह छह आठ आठ बोर हैं, वो असफल हुए। और लगभग 3 क्रॉप 4 क्रॉप का जिला है, तो वो जब रबी से लेके जब सिंचाई गर्मी के पूरे सीजन होती है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भूगर्भीय जल का स्तर कैसे गिरेगा। तो लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि उनकी उपजाऊ भूमि में ही हम जल इकाइयां का निर्माण करें और उसके अपने हिस्से की जमीनों को वो कुछ मामला में जल संरक्षण के लिए छोड़ें, ये समझाना एक महत्वपूर्ण बात है। फिर मतलब ऐसे भी उदाहरण देखे गए कि फॉर्म पॉन्ड बने हुए हैं और उसमें वो पानी न रोकते हुए उसमें वो दूसरी खेती करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनके कुछ धारणाओं को थोड़ा सा परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। फिर स्थानीय समुदाय को जोड़ना एक महत्वपूर्ण आवश्यकता थी। पंचायत के हमारी जो इकाई है, सरपंच सचिव है, जो कि निश्चित रूप से उनका भी मानस वही होता है जो गांव का होता है लगभग, तो उससे फिर अपना अभीष्ट निकालना, उससे वो सहयोग प्राप्त कर लेना, स्वीकृत कार्यों को पूरा कराना, ये भी एक बहुत बड़ी बात थी। तो जैसे कि माननीय मैडम ने कहा कि 1500 से अधिक हमारे ऐसे काम जो मनरेगा के रहे हैं उनको भी इसी अवधि में हमने पूरा कराया है और लोगों का सहयोग लिया है। और फिर बाद में तो बात यह हुई कि लोगों ने खुद आगे बढ़कर सहयोग दिया, विभिन्न इकाइयों ने, और वो हमारे चाहे इंडस्ट्रीज के लोग हैं, उन्होंने भी मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाया।
1: यानी कि एक समन्वित प्रयास रहा है पूरे जिले का, तब ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। श्रोताओं, आप सुन रहे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, अमृत सरोवर और जल संरक्षण पर बातचीत आगे भी जारी रहेगी। लेकिन पहले हमारे अतिथियों की पसंद का एक गीत सुन लेते हैं। रजनी मैम, कौन सा गीत सुनवाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: सावन का महीना है,

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज की हमारी बातचीत का विषय है नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में अमृत सरोवरों का पुनरुद्धार और जल संरक्षण, जिसका उल्लेख माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में किया था। बातचीत का ये सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। रजनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो पूरा अभियान अमृत सरोवर और जल संरक्षण का आपने सफलतापूर्वक किया, इसमें अलग अलग व्यक्तियों का, विभागों का, समुदायों का किस प्रकार योगदान रहा है, कैसे ये समन्वय बनाया आपने?
1: नरसिंहपुर जिले में JSJB 2.0 और जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत, क्योंकि हमारे यहाँ जैसा कि आपको जानकारी है कि कृषि प्रधान जिला है और बहुत उपजाऊ जमीन है, ऐसा कहा जाता है कि कुछ क्षेत्रों में तो कि एशिया की सबसे उपजाऊ जमीन नरसिंहपुर जिले में है और बहुत लोग इसमें उसका उपयोग करते हैं। हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप के क्रॉप्स होते हैं, तो शासकीय जो भूमियां भी हैं जो बहुत बड़ी संख्या में है, उनमें भी स्थानीय स्तर पर लोग संज्ञान में आए कि लोग कृषि कर रहे हैं, तो उससे जो और कृषि को लेकर इतना उत्साह है लोगों में, इतना लगाव है कि वो जरा सी भी भूमि, मतलब ऐसा है कि उसको खाली नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो और जैसा कि अभी सीओ साहब ने आपको बताया कि नर्मदा नदी हमारे यहाँ बहुत मतलब लंबा एक उनका क्षेत्र है और सारे घाटों के आसपास ये खेती, लगातार खेती के कारण जो हमारा इरोजन, सॉइल इरोजन बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ये सब समस्याएं हमारे सामने थी। तो हम जब ये अभियान आया तो हम लोगों ने एक इसको सबको एक होलिस्टिक प्लान इसको लेकर तैयार किया कि कैसे हम इन सभी समस्याओं को समाधान करने के लिए किस प्रकार के स्ट्रक्चर जो हैं वो सोच सकते हैं, क्योंकि जैसे अमृत सरोवर है वो कुछ विशिष्ट स्थानों पर स्पेसिफिक टोपोग्राफी होनी चाहिए या स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, वहीं बन सकते हैं
0: जी जी।
1: और रिसोर्स की भी उसके लिए आवश्यकता होती है, तो जहां वो आवश्यक है वहां अमृत सरोवर, अन्य जगहों पर कुछ जगहों पर हमने जो कंट्रोल ट्रेंचेस होते हैं, जो कंटिन्यूस या स्टेगर्ड कंट्रोल ट्रेंच होते हैं, वो बहुत सारे हमने लिए, क्योंकि ऐसी भूमियां जो बहुत समय से खेती के लिए उपयोग हो रही हैं उनको मुक्त करा के और वाटर कंजर्वेशन सुनिश्चित करना और दोबारा उसका उपयोग उस प्रकार से ना हो पाए, अतिक्रमण ना हो पाए, ये सुनिश्चित करना एक बड़ा टास्क था हमारे लिए। तो जिले में हम लोगों ने हमारे सभी मतलब हमारे सीओ साहब और हमारे सभी रेवेन्यू ऑफिसर जितने हैं, तहसीलदार और SDMs, उनको एक सूची प्रोवाइड की गई और सभी सरपंचों की हमने लगातार 2 महीने बैठक की, मतलब व्यक्तिगत बैठक की सरपंचों की, सचिवों की, और उनसे ये जानकारी चाहिए कि कहाँ कहाँ पे कितनी भूमि उपलब्ध है और वो किस प्रकार से उसमें उपयोग हो रहा है। और फिर सबके सहयोग से हमने प्रयास किया, लगभग 900 एकड़ भूमि जिले में हम लोगों ने मुक्त कराई और उसमें से लगभग 450 एकड़ पे हमने कंट्रोल ट्रेंचेस निर्माण कराए। तो उसका बेनिफिट ये हुआ कि भविष्य में एक तो वो खेती के लिए दोबारा उपयोग नहीं हो पाएगी, दूसरा अगर हम उसके जल संरक्षण की बात करें तो लगभग 2 करोड़ क्यूबिक मीटर पानी एक वर्ष में वो संरक्षित कर पाएंगे जो हमारे कंट्रोल ट्रेंचेस हैं। जिस समय ये काम चल रहे थे उसमें नए कार्य जो हमारे उसमें नरेगा इसकी मनरेगा चल रहा था और जीवी राम जी आ चुका था, तो नए कार्य हम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इसमें जितने भी समाज के अंग होते हैं, चाहे वो पंचायतें हों, सामाजिक संस्थाएं हों, कुछ इंडिविजुअल लोग हैं जो सक्षम लोग हैं, बड़े किसान हैं, हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं डिफरेंट टाइप के, उन सब से मीटिंग करके सबसे मतलब ये सहयोग लिया कि जिसके पास चाहे मानव संसाधन हो, चाहे हमारे पास मशीनरी हो,

0: कोई अन्य तरह के रिसोर्सेज हैं जो उपलब्ध करा पाए वो हम उसमें करें। तो उसमें इन सब के सहयोग से आप मतलब हम लगभग 70,000 ट्रेंचेस बनाए हैं जिसमें बिल्कुल भी शासकीय राशि का उपयोग नहीं किया गया। तो और इसके अलावा जैसे हमारे शासकीय स्कूल या प्राइवेट स्कूल उनमें हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनवाए, नगर पालिकाओं में हमने स्ट्रक्चर बनवाए। हमने ये प्रयास किया कि समाज के सभी अंग, चाहे वो शासकीय हो, निजी हो, उद्योग हो, स्कूल हो, संस्थाएं हो, सब मिलके अगर जिस भी स्थान पे हैं अगर वो ये देखें कि जल संरक्षण क्यों आवश्यक है और सब अपने अपना प्रयास करेंगे तो हम इसमें कुछ अचीव कर पाएंगे। तो यही लगभग हमने 70,000 संरचनाएं जो जेएसडब्ल्यू में बनाई है उसमें सभी प्रकार की संरचनाएं हैं और ये सबके मतलब हम कहें एक क्यूमुलेटिव सहयोग से ही हम ये अचीव कर पाए जो भी स्थिति है। इसका रिजल्ट क्या होगा ये तो हम अगले सीजन में ही मतलब देख पाएंगे। हमने वाटर लेवल्स लिए हैं पंचायतों में कुओं के, बोरवेल्स के लिए अभी के अभी क्या है और संरचनाओं के बाद क्या स्थिति होती है, लेकिन निश्चित रूप से जितना जल हम जैसे मैं बताया कि 2 करोड़ घन मीटर हमने ट्रेंचेस में किए, ऐसे ही लगभग 2 लाख घन मीटर हमारा जो तालाब है उनके माध्यम से, तो इस तरह से बहुत मतलब एक हम कहें सफिशियंट नंबर हम कहें जो हमारे जल संरक्षण में हम लोग इस बार प्रयास कर पाए।
1: जी जी गजेंद्र जी, जल संरक्षण संवर्धन और अमृत सरोवर के इस पूरे अभियान के बाद स्थानीय लोगों को, किसानों को इस पूरे अभियान से किस प्रकार लाभ पहुंचा है, क्या बदलाव देखने को मिला है?
2: देखिए निश्चित रूप से मतलब खासकर अगर खेती के कार्यों के लिए देखें तो जल की तो आवश्यकता है, बाकी निस्तारी प्रयोजन के लिए भी और प्रत्येक चरण में जल की उपलब्धता तो बहुत आवश्यक है। जब हमने अमृत सरोवर और फार्म पॉन्ड को निर्मित किया तो सामुदायिक स्तर पर और व्यक्तिगत स्तर पर भी लोगों ने सिंचाई के लिए उनका एक विकल्प के रूप में उपयोग किया और वो जो उनकी क्रॉप निकल के आई वो उनके लिए निश्चित रूप से एक गिफ्ट थी, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि हमको ये भी देख के काफी अच्छा लगा कि लोगों ने उसको भी कुछ अलग तरीके से देखा, जैसे फार्म पॉन्ड में उन्होंने जल की उपलब्धता के साथ मछली पालन किया, कुछ लोग पल्स के लिए भी जा रहे हैं या इस तरीके से, और ये भी मतलब इस तरीके का क्वांटम की अंडरग्राउंड वाटर की तुलना में जो सरफेस वाटर है वो कैसे फसल को ज्यादा बेनिफिट करता है। तो ये अब अल्टीमेटली धीरे धीरे बात इस तरीके से भी जा रही है कि वो लोग जो शुरू में थोड़ा सा रिलक्टेंट रहते थे अब वो उनका और भी रहता है कि हम कैसे बेहतर करें। जैसे हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि खेतों में इस तरीके के रिचार्ज पिट बने जहां पे कि खेतों का पानी जब बाहर चला जाता था उसकी तुलना में वो अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करे, इस तरीके के सिस्टम बनाने की भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो असफल बोर हैं उनमें भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग रिचार्ज पिट बनाएं सो दैट कि पानी अगर वो बोर नहीं दे रहे हैं तो हम उनके माध्यम से पानी भूगर्भीय सतहों में प्रवेश करा सकें।
0: इसमें बस मैं एक पॉइंट और जोड़ना चाहूंगी, जैसे आपने बताया कि क्या मतलब प्रभाव रहा, तो इसमें हम लोग जब इस अभियान के लिए गांव-गांव जा रहे थे तो कुछ किसानों ने स्वयं अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि उनके जो एक खेत में 6-8 बोरवेल करा चुके हैं किसी में पानी नहीं निकल रहा है, उसके बाद उन्होंने खेत तालाब 3-4 बनाए और 1-2 सालों के अंदर उनके सभी जो पुराने बोर थे उसमें पानी का लेवल आ गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी लर्निंग है किसानों के लिए कि आप अनलिमिटेड एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं मतलब जो आपका भूगर्भीय जल है उसको, और फाइनली हमको सरफेस वाटर पर निर्भर होना ही पड़ेगा। तो अगर उस पर हम निर्भर रहे सिंचाई के लिए मुख्य रूप से अपने पास, तो हम एक तो भूगर्भीय जल को बचा सकते हैं और दूसरा उसको मतलब उसको रिजुविनेट भी कर सकते हैं, उस सोर्स को वो भी हम कर सकते हैं। तो ये उनके खुद के अनुभव है जो हम लोगों ने उसको प्रयास किया कि उन किसानों को जो अपनी विभिन्न सभाएं हैं, सम्मेलन कर रहे हैं, जहां भी हम वर्कशॉप कर रहे हैं वहां उनको ही बोले कि अपने अनुभव शेयर करें जिससे अन्य लोग उससे थोड़ा सा प्रेरित हों और अपने यहाँ उसका उपयोग करें।
1: निश्चित रूप से आपके प्रयासों से स्थानीय लोगों को काफी फायदा हुआ है और जल संरक्षण के प्रति लोग ज्यादा जागरूक और संवेदनशील हुए हैं। श्रोताओं, जल संरक्षण पर बहुत ही अच्छी चर्चा हमारी चल रही है और अब बारी है गजेंद्र सर आपकी पसंद के एक गीत की।
2: जीवन में आपको हर जगह संघर्ष की स्थितियां रहती हैं। मेरी जंग फिल्म का एक गाना है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।
1: जी जी, जी।
2: श्रोताओं को अगर सुना सके तो बहुत अच्छा।
1: बिल्कुल आइए सुनते हैं ये गीत।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज का हमारा विषय है अमृत सरोवर और जल संरक्षण, जिसकी चर्चा जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की। और हमारे आज के इस कार्यक्रम में अतिथि विशेषज्ञ हैं श्रीमती रजनी सिंह और श्री गजेंद्र सिंह नागेश जी। आप दोनों ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। गजेंद्र सर, आपने अमृत सरोवर जल संरक्षण और पुराने जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन का जो पूरा अभियान स्तर पर कार्य किया, हम जानना चाहेंगे कि क्या शुरुआत में जिस लक्ष्य को आप लेकर के चल रहे थे वो पूर्ण हो गए, और भविष्य में इस अभियान को लेकर के आपकी क्या योजनाएं हैं?
1: देखिए, जो नेशनल ग्राउंड वाटर बोर्ड है उसकी एक रिपोर्ट है। एक तो इंडिया वाइड हमने अंडरग्राउंड वाटर का बहुत व्यापक दोहन किया है। नरसिंहपुर भी उन जिलों में एक है जो अब रेड जोन में है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को बोर के माध्यम से एग्जॉस्ट करने की वजह से बहुत हम उस वाटर टेबल में कहीं ना कहीं नीचे गए हैं। तो एक आम के बारे में ऐसा दावा नहीं किया जा सकता कि कैसे और कब खत्म होगा, लेकिन ये जरूर है कि एक शुरुआत इसको मानी जा सकती है। और ये अगर सरकारी और सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से, स्थानीय सहभागिता के माध्यम से, जो बेसिकली बायर्स हैं सोसाइटी के, उनके साथ अगर हम कर रहे हैं, तो शायद उम्मीद की जा सकती है कि ये सस्टेनेबल हो सकेगा। लेकिन आवश्यकता हमारे निस्तारी प्रयोजनों के साथ साथ अगर खेती की भी है, एक बात होती है कि खेती को हम ज्यादा उपादेय और लाभ के रूप में हम ले जाएंगे, क्योंकि कृषकों के लिए वो एक चुनौती हमारी है। हम कृषक बाहुल्य जिले भी हैं, तो हमें पानी की निरंतरता भी चाहिए और उसकी सततता भी चाहिए। तो हमारे लिए ये काम निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है और हम इसको मानते हैं कि शुरुआत ही हमने की है। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहूंगा कि नरसिंहपुर जिले को माँ नर्मदा की गिफ्ट मिली हुई है। लगभग 146 किलोमीटर का तट है दोनों क्षेत्रों में मिला के, उत्तर दक्षिण में, तो बड़ा क्षेत्र नर्मदा जी के जल से सिंचित होता है। और लगभग 24-25 ऐसी नदियां हैं जो कि उसको कहीं ना कहीं से अपनी सहायकता प्रदान करती हैं जलों के रूप में, जो खासकर विंध्य और सतपुड़ा से जो नदियां छोटी छोटी निकलती हैं वो अपना जल भी उनको वापस देती हैं। लेकिन हम अगर हर जगह पे, हर खेत में, हर गांव के लिए अगर कार्य योजना नहीं बनाएंगे तो वो एक मुश्किल होगी। एक हम लोग अपने जिले में नर्मदा समृद्धि परियोजना के माध्यम से हमने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां ली हैं, जिसके अंतर्गत जैसे मैडम ने बताया कि करीब 900 एकड़ से ज्यादा जमीन हमने उसको, जो ट्रेडिशनल धान्य फसलें हैं उससे हटके, हम उसको वानिकी और उद्यानिकी के लिए ले जा रहे हैं। और ऐसी जमीनें हमने

0: वक्त फेंस करके सुरक्षित करें, कम्युनिटी को विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को उसको अनुबंध के माध्यम से कुछ जमीनें देके एक निश्चित अवधि के लिए ये प्लानिंग है कि हम उनको दें और ये तय कर सकें कि नर्मदा जी के संरक्षण के लिए भी जल की उपलब्धता सतत बनाए रखने के लिए भी क्या आवश्यक है। तो क्या हम सॉइल इरोजन रोक रहे हैं, क्या हम रासायनिक खेती के स्थान पर प्राकृतिक खेती को बढ़ा पा रहे हैं और वो एक सस्टेनेबल मॉडल के रूप में आ रही है, क्या हम बी कीपिंग जैसे भी चीज कर रहे हैं जो ओवरऑल पूरे इकोसिस्टम को नेचुरलाइज कर पा रहे हैं। तो नर्मदा समृद्धि समितियां हर ऐसे 91 गांव में बनी जहां से नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं और अपेक्षा समिति के माध्यम से स्थानीय पंचायत के लोग और स्थानीय समुदाय को जोड़ने से है कि हम ये तय करें कि क्या नहीं करना है। मसलन जैसे कि जो नॉन डिग्रेडेबल गार्बेज है वो बहुत बड़ी चुनौती है, अजैविक कचरा, और खासकर अगर देहातों की बात करें क्योंकि शहर में की तुलना में वहां कहीं प्रसंस्करण नहीं है, बहुत ज्यादा कलेक्शन का भी एक वातावरण निर्माण की आवश्यकता है। तो वो जितना भी अजैविक कचरा वो चाहे पनी प्लास्टिक के रूप में डिस्पोजल के रूप में होता है वो नदियों के माध्यम से प्रदूषण का कारण बनता है, तो हम उनके भी रोकथाम की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक पत्तलों की बात कर रहे हैं, बर्तन बैंक की बात कर रहे हैं। तो एक तो ये बात, और क्या करें हम हरी चादर बिछाएं, रैपिडेंट जोन को हम ज्यादा मजबूत करें, वानिकी और उद्यानिकी पौधे और उसी के माध्यम से आजीविका सृजन की भी गतिविधि हो। ऐसा नहीं हो कि हम जब इकोसिस्टम बैलेंस कर रहे हैं तो किसी की आजीविका बाधित हो, वो भी उपार्जन हो, महत्वपूर्ण बात है। ऐसे ही एक जिले में सिंगरी नदी है जो नरसिंहपुर की लाइफ लाइन है, उसके भी पुनर्जीवन का काम किया जा रहा है और उसमें न केवल जन सहयोग, जैसे कि मैडम ने बताया कि उसमें लगभग 2 माह तक जिले के विभिन्न विभागों की जेसीबी और 200 जैसी बड़ी मशीनें लगभग नदी को उसके कोर्स करेक्शन के लिए मदद करती रहीं, बेंच बनाने का काम किया। फिर बाद में उसमें माननीय मंत्री जी ने उसमें हमको लगभग कुछ प्रोजेक्ट सेंक्शन किया है करीब 4 करोड़ रुपए का, जिसमें कि हम शहर से पहले के 4 गाँव में नदी पुनर्जीवन के काम के साथ साथ रिवर फ्रंट भी डेवलप कर रहे हैं और समाज को एक अच्छी गतिविधि के रूप में उसको देने का काम कर रहे हैं।
1: जी, अगर देखा जाए तो एक पूरे पारिस्थितिकी को, एक पूरे इकोसिस्टम को पुनर्जीवित करने की कोशिश की जा रही है। रजनी मैम, प्रधानमंत्री जी द्वारा मन की बात कार्यक्रम में अमृत सरोवरों और जल संरक्षण को लेकर के नरसिंहपुर जिले की सराहना की गई, तो आप नरसिंहपुर जिले की कलेक्टर हैं, 2013 बैच की युवा IAS अधिकारी हैं, कैसा महसूस कर रही हैं आप?
2: देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब जिले का नाम मन की बात में लिया गया तो हम सब के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जिले के लिए एक राष्ट्र स्तर पर जिले का नाम आना निश्चित रूप से, और आपके काम को इतना बड़ा एक रिकग्निशन मिलना अपने आप में हम सब के लिए बहुत उत्साह और गर्व का विषय रहा है। और इससे हमको और प्रेरणा मिली है, जो आपने अभी लक्ष्य की बात भी की थी कि जो हम अभी हमने काम किया है वो बस एक प्रारंभ है, जैसे सीओ साहब ने बताया, तो हमें बहुत प्रेरणा मिली है कि हम अपने इस काम को और आगे बढ़ाएं। और बरसात के बाद, जैसा अभी पहले भी जिक्र में आया कि हमारे पास बहुत सारी ऐसी भूमियां हैं जहां हम लोग निखाली कराई है हमने, तो वहां पे हम लोग अभी तो हमने छोटे संरचनाएं बनाई हैं। हमारा प्लान है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो उनका एक मुख्य विषय रहता है अमृत सरोवर को लेके, तो हम लोग इन क्षेत्रों में भूमियों में बड़े बड़े सरोवरों का निर्माण कराएं। और विशेष रूप से अगर हम देखें ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बड़े तालाब होते हैं, तो बहुत एक तो आप जो हम कहते हैं कि एक आपका जल स्तर है उसको बढ़ाने में मदद मिलती है, और बेसिक जो आपका सरफेस वाटर है अगर वो हमने रोक लिया तो वो उस क्षेत्र की जो रूटीन की आवश्यकताएं हैं, चाहे जानवरों के लिए पेयजल की बात करें या सिंचाई की बात करें या फिशरीज की बात करें, तो जो कृषि को लाभ का धंधा बनाने वाला वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही प्रिय प्रोजेक्ट है, तो उसमें भी सहयोग मिलता है। तो हम लोग प्लान यही है कि हम जो ग्रामीण एक अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से सभी चीजें समन्वित करके उसको बढ़ाने का प्रयास कर पाए। निश्चित रूप से हम लोग अपना जो हमारा अभी बारिश के बाद का समय होगा उसके लिए हमारे पास बहुत सारी योजनाएं हैं कि हम कैसे इन सभी भूमियों पे कुछ बड़े तालाब और निर्मित कर पाएं। और प्लांटेशन बेसिकली एक सेकेंड लेवल है जल संरक्षण का, जब आप संरचनाएं बनाते हैं उसके अलावा प्लांटेशन करते हैं, तो हम लोग लगभग 500 एकड़ भूमि पे फेंसिंग करके उसकी प्लांटेशन की मतलब कुछ जगह 200 एकड़ पे लगभग कर लिया है और बाकी आगे प्लान है। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस प्रोत्साहन से जिले को एक नई ऊर्जा मिली है और काम करने की, हमारी पूरी टीम बहुत उत्साहित हुई है और विभिन्न माध्यमों से हमको जो बधाइयां मिली हैं मन की बात में नाम आने से, तो हम अब एक नई ऊर्जा से इसमें काम करेंगे और प्रयास करेंगे कि हम जितना अभी हमने काम किया उससे और अधिक प्रगति लाएं। और जिले में निश्चित रूप से जो पानी की जो समस्या है जो अभी फील नहीं हो रही है लोगों को, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी जल संरचनाएं या नदियां जैसा सीओ साहब ने बताया वो है, तो अभी हमारी वो चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कुछ वर्षों बाद 10 वर्षों बाद तो चिंता का विषय बनेगा,
3: बन सकता है।
2: तो हमारी योजना ये है कि जब वो विषय बने उसके पहले ही हम इतना कुछ काम कर लें कि हमारी आने वाली पीढ़ियों को उस समस्या का सामना न करना पड़े, उनके पास एक बेहतर जल की व्यवस्थाएं हो। और इसके लिए लगातार हम लोग जन समुदाय को भी हमें प्रशासनिक भी बहुत सहयोग मिल रहा है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी हैं, उनका लगातार मार्गदर्शन सहयोग मिलता रहता है, क्योंकि आरडी की

0: उसकी मारडी की होती हैं। तो स्थानीय स्तर पर निश्चित रूप से बहुत हमको सहयोग मिल रहा है सभी, मैं कहूँ इस तरह समाज के, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, समाज हो, संस्थाएं हो, सबका सहयोग मिल रहा है। और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो हमें एक उपलब्धि मिली है हमारा नाम जिले का लेके, उसको हम और आगे बढ़ाएं, यही हम प्रयास कर रहे हैं।
1: निश्चित रूप से नरसिंहपुर जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर आना आपके साथ साथ पूरे जिले के लिए एक प्रेरणादायी उपलब्धि है। क्या संदेश आप देना चाहेंगे जल संरक्षण के लिए, सरोवरों के संवर्धन के लिए, जल स्रोतों के संवर्धन और संरक्षण के लिए, और व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से कैसे लोग इसमें अपना योगदान दे सकते हैं?
0: देखिए, अगर हम अपने मतलब देश की बात करें या प्रदेश की बात करें, तो आज की स्थिति में हम सब लगातार देख रहे हैं कि जल की कमी हर जगह महसूस हो रही है। और जितना हम उपयोग कर रहे हैं, जितना पर कैपिटा आवश्यकता है और कितना हम उपयोग कर रहे हैं, एक तो उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। मतलब बहुत ज्यादा पर व्यक्ति उपयोग किया जा रहा है जल, क्योंकि अवेलेबिलिटी अच्छी है इसलिए। और दूसरा, जो आज से हम कहें 10 वर्ष या 15 वर्ष पहले जो स्थिति थी आपके वाटर लेवल की, ग्राउंड वाटर लेवल की, वो बहुत डिप्लीट हो गई, हर जगह डिप्लीट हुई है। तो इवन जो आपके बहुत नदियों के कछार वाले क्षेत्र हैं, जो बहुत अच्छी जल उपलब्ध है, वहां पर भी जल के संकट की स्थिति आ गई है। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि जल संरक्षण में सरकार जरूर एक, क्योंकि प्रशासन का ये, सरकार का ये काम होता है कि जो चीजें वो प्लानिंग करे और उनको एग्जीक्यूट कराए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जो समस्याएं जनता को झेलनी है उसमें उसकी जिम्मेदारी सरकार पे होती है। लेकिन जल संरक्षण ऐसा विषय है जो हर व्यक्ति के लिए जरूरी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां आज की स्थिति में पानी नहीं है और पानी को लेके कितने सारे विषय हो रहे हैं। तो एज अ पर्सन हम, हमें अपने व्यक्तिगत घर की बात करें, अपने ऑफिस की बात करें, या हमारे खेत हैं, किसान हैं, हमको अपना प्रयास करना चाहिए कि हम जो एक इस अभियान में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नारा भी दिया गया कि खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में, उस भावना से काम करें। और अपना जो भी परिसर, जितना बड़ा भी घर है, जितना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसमें अगर हमने जल संरक्षण का प्रयास कर लिया, तो एटलीस्ट हम एक एक छोटे छोटे प्रयास से, हम जानते हैं बूंद बूंद सागर भरता है, बड़ी अच्छी कहावत है। तो हम सबको अपना व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। और जो बड़े लेवल के प्रयास है वो तो शासन के माध्यम से हो ही रहे हैं, वो किए जा रहे हैं, लेकिन कम से कम हर व्यक्ति अगर इसमें पार्टिसिपेट करेगा तो निश्चित रूप से इसका असर दिखेगा। और हमने भी यही प्रयास किया है, जो हम लोगों ने अभियान चलाया है उसमें हमने यही प्रयास किया है कि जैसे हमने लगभग 4,000 SHG की महिलाओं के माध्यम से सोकपिट और बोरी बंधान के काम कराए, जिसमें कोई राशि खर्च नहीं हुई। तो बेसिकली इस पूरे अभियान का, या तो पंचायतों के माध्यम से या तो इसमें और समुदाय के माध्यम से, तो इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि लोग इस अभियान से जुड़े, लोगों को व्यक्तिगत रूप से महसूस हो कि ये हमारा काम है, ये किसी सरकार का या किसी का काम नहीं है, ये हमारा भविष्य जुड़ा हुआ है, हमारे पीढ़ियों का भविष्य जुड़ा है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए। तो प्रयास ये है कि हर एक ऐसा रूफ जिसमें पानी धारण करने की क्षमता हो, उसका पानी जमीन में जाए, हर एक खेत जिसमें पानी भरता है, हमने किसानों से चर्चा की है कि अपने खेत में छोटी जगह जहां भरता हो वहां वो ऐसा कुछ सोकपिट जैसा बनाए जिससे पानी कम से कम भरे नहीं और उनके लिए उपयोगी हो। तो इसके लिए बड़ा एक, हम कहें जन आंदोलन जैसा विषय है, जो सबको इसकी माता समझनी पड़ेगी। लेकिन प्रयास ऐसे धीरे धीरे शुरू होते हैं और आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयास हुए हैं जो आगे जाके बहुत उसके बड़े इम्पैक्ट हुए हैं। तो हमारा बस यही जिले में ये प्रयास है कि हम ऐसे ही, मतलब लोगों को जब भी हम किसी जगह, जहां भी लोग होते हैं, जहां जन समुदाय होता है, चौपाल में चर्चा करते हैं कि भाई इसको कैसे आगे बढ़ाना है, तो लोगों के दिमाग में इस बिंदु को लाना कि ये एक एसेंशियल आवश्यकता है, ये बहुत जरूरी है, और वही हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और समुदाय, व्यक्ति, सरकार, सब मिलके जब काम करेंगे, तब हम, मैं चाहे जिले की बात करूं, प्रदेश की या देश की, तब हम जो ये जल की आवश्यकता है, जल की जो स्कार्सिटी है, उससे लड़ पाएंगे और उसको अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए सुनिश्चित कर पाएंगे उपलब्धता। यही हमारा लगातार प्रयास है और उसी भावना को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं।
1: गजेंद्र सर, आपने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके बाद जल संरक्षण हो, अमृत सरोवर हो, कैच द रेन या ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, आपने इस क्षेत्र में लगातार मैदानी स्तर पर परिणामदायी कार्य किए हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं जल संरक्षण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को लेकर के? कौन से ऐसे व्यक्तिगत प्रयास किए जा सकते हैं? और जैसा कि आप जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हैं, हम ये भी जानना चाहेंगे सामूहिक रूप से किस प्रकार के प्रयास किए जा सकते हैं इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए।
2: देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो विजन है या जो उनकी अपेक्षा है हम सभी लोगों से, वो अगर जल संरक्षण के लिए है तो वो वास्तव में आवश्यक है। और आप देखें तो वर्ल्ड वाइड वाटर स्कार्सिटी की स्थिति है और क्लाइमेट चेंज भी इससे जुड़ा हुआ विषय है, खासकर स्वच्छ जल और आपके निस्तारी प्रयोजन के लिए होने वाले जल की उपलब्धता बहुत कम है। भारत यूनिसेफ के एक रैंकिंग में भारत में उपलब्ध जल का केवल 18% वाटर जो है वो उपयोगी है आपके लिए, जो कि अदरवाइज वो पॉल्यूटेड है या कुछ अलग तरीके का कारण से है। तो ये विषय ऐसा है।

0: जो हर तरीके से लोगों के प्राथमिकता का विषय होना चाहिए। और अगर मैं नरसिंहपुर की बात करूं तो हमारे पास 3 लाख हेक्टेयर के आसपास भूमियां हैं, 2,40,000 परिवार हैं। तो जो मैडम के भी हमारे कॉल हैं, वो हम अपेक्षा ये करेंगे कि प्रत्येक किसान इसमें शामिल हो और अपने खेत में वो लो रिच जहाँ है हम वहाँ पर रिचार्ज पिट बनाएं, असफल बोरों को फिर से जीवंत करें, क्योंकि एक धारणा है जल के लिए कि स्रोतों से पानी लो और स्रोतों को पानी दो।
1: जी
0: तो जो
1: जी
0: स्रोत हमें देते देते सूख गए हैं उनको अगर हम वापस भर सकें तो हम नहीं तो अगली पीढ़ी उसको उपयोग कर पाएगी। तो आज की जो एक चुनौती है, मैं मानता हूं कि क्लाइमेट चेंज भी उसका एक घटक है, तो हम उस पे जाके काम करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि समाज का प्रत्येक वर्ग हर स्थिति में जो जहां जैसा हो वो रियल टाइम आज उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करे। तो एक ये धारणा के साथ नरसिंहपुर आगे बढ़ रहा है।
2: जी बिल्कुल। श्रोताओं, अमृत सरोवर जल संरक्षण, कैच द रेन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ग्राउंड वाटर रिचार्ज, इन विषयों का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई माह के मन की बात कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिले का जिक्र किया था। इन्हीं विषयों पर हमने चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया था हमारे अतिथि विशेषज्ञों को, श्रीमती रजनी सिंह, कलेक्टर जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश, और श्री गजेंद्र सिंह नागेश, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत नरसिंहपुर मध्य प्रदेश। हमें बता दें कि नरसिंहपुर जिले में अमृत सरोवरों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और जल संरक्षण के कार्य आप दोनों के ही नेतृत्व में, आप दोनों के ही मार्गदर्शन में प्रभावी रूप से संचालित किए गए हैं। विभिन्न विभागों, जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायतों एवं स्थानीय नागरिकों के समन्वित प्रयास से अमृत सरोवरों का पुनर्जीवन सुनिश्चित हुआ है, जिससे जल संरक्षण के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण, भूजल संवर्धन को भी नई दिशा मिली है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य समय देकर हमसे विस्तार में चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार।
4: नरसिंहपुर के अमृत सरोवर, ये रिकॉर्डिंग हमें आकाशवाणी जबलपुर के सौजन्य से प्राप्त हुई। अब पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में लीजिए, आपको सुनवा रहे हैं ऐसी ही एक प्रेरित करने वाली भेंट वार्ता, कैच द रेन। अतिथि हैं श्री भरत भाई तिलवा, ट्रस्टी गिर गंगा परिवार ट्रस्ट, श्री दिलीप भाई सेकिया, संस्थापक ट्रस्टी और अध्यक्ष गिर गंगा परिवार ट्रस्ट। भेंट करता है हितेश कुमार मावाणी, कार्यक्रम प्रमुख, आकाशवाणी अहमदाबाद।
5: दिलीप भाई और भरत भाई, आपका आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में हार्दिक अभिवादन है, स्वागत है।
6: नमस्कार।
5: सबसे प्रथम हम दिलीप भाई से जानेंगे कि आपको ये जल संचय कामगिरी है उसकी प्रेरणा कब मिली और इसके लिए किन परिस्थितियां जवाबदार हैं?
6: बेसिकली मैं किसान का बंदा हूँ, अभी भी मैं और मेरे फादर खेतीबाड़ी कर रहे हैं, मेरे पास भी पशुपालन का काम है, 200 गिर की गायों है। तो मैंने चीज देखा कि जिस साल बारिश होती है ना, इस साल मेरे को गाय को चारा मुफ्त मिलता था, जिस साल बारिश नहीं होती है इस साल मेरे को वो परचेस करना महंगा पड़ता था। किसान के साथ साथ मैं वहां के भारतीय किसान संघ का अध्यक्ष बना, तो इस समय में मैंने बहुत गांव का प्रवास किया, किसानों को मिले। उस समय मेरे को सबसे बड़ी अगर किसान की ओर विस्तार की समस्या अगर कोई दिखाई दी ने वो दिखाई दी पानी। मैंने नजदीक से जुआ कि हमारी सौराष्ट्र की धरती के किसानों को अगर पूरा पानी मिल जाए ना, तो हमारे देश की 140 करोड़ जनता का पेट भरने जैसा अनाज पैदा करने की ताकत वहां की जमीनों में भी है और वहां के किसानों में भी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत होती थी पानी। इस जगह पे एक समय 20-30-40 फीट पे पानी था, वो पानी धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे बहुत गहराई पे 100-200-500 हजार, कहीं कहीं जगह पे तो 2-2 हजार फीट पे गहराई पे चला गया। वहां की किसानों की जो भी आमदनी होती है ना, वो आमदनी का 25% पानी ढूंढने में जा रही है। तो इस विषय की एक प्रेरणा मिली कि इस समस्या का रोल बहुत समझा। तो हमने देखा तो बारिश तो हो ही रही है फिर भी पानी नहीं है, तो हमने थोड़ी भौगोलिक रचना का अभ्यास किया, क्योंकि वो सौराष्ट्र की धरती है, यहाँ पे 1200 किलोमीटर का दरिया किनारा है, वहां की धरती पथराड़ और डूंगरा है, बारिश गिरती है, लेकिन वहां जरूरत है इतना रोकने का, छोटे मोटे चेक डैम और तालाब न होना हिसाबे 80-90% पानी समुद्र में चला जाए। तो इस विषय की गंभीरता हमको समझ में आई और उसके बाद हमने इस विषय पे काम शुरू करा, लोगों को जोड़कर ये पानी हम कैसे बचा पाए।
5: दिलीप भाई, आप ये भी बात कीजिए कि सौराष्ट्र रीजन में जो 1984-85-86 में जब 3 साल लगातार बारिश नहीं हुई थी, तो उस दौरान कैसी परिस्थिति थी?
6: एक समय था वो हम बात किया जाए कि यहाँ से 40-50 साल के पुराने की बात है, इस समय में क्या हालत

0: वैसे कोई साधन भी नहीं थे, तो जमीन में से पानी भी निकाल नहीं रहे थे हम लोग। और इस समय गुजरात के अंदर 3 साल का 85, 86 और 87, इन 3 साल में ऊपर से बारिश नहीं गिरी। फिर भी एक बात तो सही है कि वहां पे लोग सहन कर गए। उसका एक विजन था कि ऊपर से बारिश नहीं गिरी थी, जमीन के अंदर पानी कहीं ना कहीं पड़ा था। लेकिन उस समय में राजकोट को इतने दुष्काल के समय में देखो कि वहां पे उस समय में बस्ती भी कम थी, फिर भी ट्रेन से पानी वहां पे आया था। और इसके बाद लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आई और यहाँ के सीएम ने भी वहां पे मेहनत की। और वो समय था कि बहुत सारे छोटे मोटे चेक डैम बने थे, और वो चेक डैम बनने के बाद वो वहां के विस्तार में, किसानों में और विस्तारों में थोड़ी सी मजबूती हुई, लोगों दो पैसा कामने लगे, थोड़ा सा विकास हुआ और राष्ट्र को वहां पे फायदा भी हुआ है। मैंने जब देखा कि सबसे बड़ी समस्या पानी है तो उसको कैसे जोड़ा जाए, तो मैंने 3 साल तो मेहनत की गवर्नमेंट में रजूआत करने के लिए। तो काम इतना बड़ा था, ये प्रोसेस गवर्नमेंट भी अच्छी तरह से कहीं ना कहीं काम कर रही है, लेकिन ये प्रोसेस इतनी बड़ी थी। तो मैंने बोला कि अगर कोई भी कामयाबी चाहे ना, तो इसमें लोक आंदोलन होना चाहिए, लोक जागृति होनी चाहिए। तो हमारा एक एनजीओ था गिर गंगा परिवार, जो हमने गायों के लिए तैयार किया था, और ये हमने पानी के विषय में काम शुरू कर दिया। धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे धीमे लोगों को जोड़ जोड़ के हमने एक काम शुरू किया। पहली शुरुआत हमने की थी कि एक चेक डैम को रिपेयर किया, 2022 में हमने काम की शुरुआत की थी।
1: तो भरत भाई, आपको ये जल संचय कामगिरी में कैसे आपकी रुचि उत्पन्न हुई?
2: पहली बार गिरगंगा परिवार का मेरे को आमंत्रण दिया गया प्रेसिडेंट हिसाब से। मैंने पहली बार दिलीप भाई को सुना, उसकी जो बात में जो लगाव और प्रेम था पानी बचाने का, उसी संदेश से मेरे को प्रेरणा मिली कि गिरगंगा परिवार जो काम कर रहे हैं इसमें उसका पर्सनल ज्ञातिवाद वगैरह कोई स्वर जन समुदाय का सबका भाग वाला इससे काम कर रहे हैं, तो मेरे को उसके साथ जुड़ने की प्रेरणा हो गई। तब से मैं गिरगंगा परिवार के साथ में उसका सार्थक तरीके से जुड़ा रहता हूँ।
1: भरत भाई, आप स्वयं अपनी जो फैक्ट्री है वहाँ पर भी आप ये हर महीने आपका ये प्रैक्टिस रहता है, और साथ ही में आप अपने जो इंडस्ट्रीज है, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको भी आपने प्रेरित किया है। तो इसी तरह से हर महीने कितना कंट्रीब्यूशन होता है, और जो गिर गंगा परिवार ट्रस्ट के आप डोनेशन करते हो?
2: अभी ये 2 महीने पहले की प्रक्रिया है, अभी शुरुआत हुई उसकी। कभी कभी जब भूख लगती है तो खाने के कोई ना कोई संशोधन कर ली, इसी भी इनमें से एक शोध बनाई। इनमें से ये पेड़ का पेड़ फर्स्ट सब्जेक्ट, अभी मेरी कंपनी में इसकी कॉलेज की तरफ बहुत स्टूडेंट लोग आए थे, कंपनी की हर जगह पर एक एक बॉक्स रखा है, आगे का रिजल्ट के बाद आएगा, मालूम नहीं रिजल्ट सही आएगा ऐसा पक्की बात है, लेकिन कितना है वो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन आएगा पक्का।
1: आपने बहुत अच्छी बात बताई भरत भाई। आइए हम फिर से दिलीप भाई से प्रश्न करते हैं कि कैच द रेन जल संचय कामगिरी के अंतर्गत आप कौन कौन सा कार्य कर रहे हैं?
0: हमारे देश भारत की सबसे बड़ा अगर कोई काम है तो वो किसानों का काम है। अभी तक हमारा देश की पहचान भी विश्व के अंदर खेती प्रधान देश से हो रही है, और सबसे बड़ा पानी का यूज होता है वो तो किसान एग्रीकल्चर में हो रहा है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी प्रवृत्ति चल रही है, तो इस देश का जब बड़ा प्रधान कोई सूत्र देता है जल संचय जन भागीदारी, इस सूत्र को सार्थक करना है। तो इसके हिसाब से हमारी संस्था ने तय कर दिया कि पानी की एक भी बूंद हमको समुद्र में नहीं जानी है। तो इसको किस तरीके से किया जाए, बहुत अभ्यास किया जाए। हमारा जो भी अभ्यास है वो अभ्यास से हमको जो सीखना मिला, तो इसमें 2-3 चीज हमको जाना। पहली चीज होती है कि वहाँ की भौगोलिक रचना को देखना पड़ता है। हमारी गुजरात की अगर बात किया जाए तो गुजरात में 2 चीज है। हमारे अहमदाबाद के ऊपर मध्य गुजरात और दक्षिण गुजरात में हम जब जाए ना, तो वहाँ पे माटी और रेताड़ का प्रदेश है, वो जमीन ऐसी है। लेकिन हम सौराष्ट्र की अगर चला जाए तो वहाँ पे पथराड़ और डूंगराड़ है। तो पानी स्टोरेज की बात है, तो सौराष्ट्र की धरती में सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज का कोई उपाय है तो छोटे मोटे चेक डैम और तालाब, इस विषय में अगर भार दिया जाए तो अच्छी बात होती है। लेकिन ये रूरल की बात हुई, क्योंकि मैंने बोला ना कि 80% पानी तो एग्रीकल्चर में जा रहा है, लेकिन अभी सिटी भी बड़े हो रहे हैं, लोग गांव छोड़ के सिटी में क्यों आ रहे हैं, उसका भी अगर विजन दिखा जाए तो वो पानी आएगा। तो हमने लोगों को बचाया कि सिटी के अंदर पानी कैसे रोका जाए, तो दरेक लोगों की एक जिम्मेदारी होती है, उसका साल का जो भी पीने का पानी है वो स्टोरेज का, बारिश का पानी का टंकी हर घर पे होना चाहिए, जमीन के अंदर बारिश का पानी स्टोरेज किया जाए, पहला तरीका। दूसरी बात, अभी तक हमको जब भी पानी की जरूरत पड़ती है तो हम जमीन से पानी निकाल रहे हैं, तो अब हम ऐसा बोर करें कि हम बोर करके जमीन को पानी रिचार्ज किया जाए, उसके बाद अगर बोर नहीं ले रही है पानी तो ही हम बाहर पानी निकालने देंगे। लेकिन गांव के लिए सबसे अगर बड़ी चीज है तो कुआं रिचार्ज, हम कुआं रिचार्ज करवा रहे हैं। जितने भी बोर है किसानों ने किया, जो फेल हो गए हैं, जिसमें पानी नहीं है वो बोर रिचार्ज करना है। सभी किसान

0: के खेत में छोटी मोटी खेत तलावड़ी बनाना है। मैं बोलता हूँ गांव के आगे वालों को, 25 इंच बारिश, 25 इंच बारिश अगर गिरती है और इस बारिश गिरने के बाद हमारे गांव की बॉर्डर के बाहर अगर बारिश का पानी निकला तो वहां के गांव के आगे वालों की दीर्घ दृष्टि में कहीं ना कहीं कुछ क्वेरी है, उसको सुधारनी चाहिए। इस विषय में लोगों को समझाकर बस एक ही काम है, डैम बनाना, चेम ऊंडा करना, गहराई करना और खेत तलावड़ी बनानी, कुआं रिचार्ज करना और बोर रिचार्ज करके हम ये संस्था काम कर रही है। हम जब गांव में विलेज में मीटिंग करते हैं ना, लोगों को जुड़ते हैं, तो उस समय एक प्रसंग मेरे को याद, मैं सबको बताता हूँ, अगर हमने एक डंपर माटी अगर तालाब से निकाल कर अगर हमने बाहर डाल दी तो वो लॉन्ग टाइम के लिए 10,000 लीटर पानी की जगह होगी। एक बार खर्चा करना है। मैं बोलता हूं अगर पानी में कोई 1 लाख रुपया लगाता है ना तो राष्ट्र को 1 करोड़ का फायदा होता है।
1: कैसे?
0: क्योंकि एक बार डैम खोदने का खर्चा होता है, बाद में 100 साल चलेगा तो क्या होगा, बार बार एक बार पानी आया तो पानी की कीमत अमूल्य है। पानी की कोई कीमत, अगर पानी की कीमत समझना है ना तो हम रण में जाए देखते हैं, तरस बताते हैं पानी की क्या कीमत होती है। किसान बताता है कि जब उसका पाक सूखता है पानी की क्या कीमत होती है। अगर पानी की कीमत हमको समझनी है ना तो हमको ये विस्तार से हम समझाएगा तो क्या होता है कि एक बार खर्चा करने से बार बार लाभ मिलता है, वो पानी वो चेकडेम का तरीका होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं लोगों को कि एक बार पानी में रुपया लगाने से क्या हुआ, जिस गांव में हमने काम किया ने उस गांव में खुशहाली आने देख। मैंने देखा, हमारे यहाँ के 2-3 गांव का मैं उदाहरण देता हूं। हमारे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में कालावड़ तहसील के पास एक वरणा गांव है, इस गांव के पानी 700-800 फीट की गहराई पे पानी था। वहां पे लोगों ने हमने जोड़ा, 2-3 मीटिंग की उसका, थोड़े लोग जामनगर रहते हैं, थोड़े राजकोट गांव में, सभी जगह पे मीटिंग की और गांव लोगों ने चेरी की एकता करके वहां डैम करना शुरू किया। इस गांव में गर्मी के दिन में तो गांव को बोर करने का मशीन आता है हर साल और किसानों का 1 करोड़ रुपया लेके जाती थी। और वहां पे अगर बोर को शुरू करने के 1-2 किसानों के बोर में अगर पानी ज्यादा हो गया तो उस साल 2-3 करोड़ लेके जा रही थी। लेकिन जब किसानों के एकता करके वो चेक डैम तालाब बनाने का शुरू किया, लास्ट 3 साल में उस गांव में बोरवेल आनी बंद हो गए तो वो किसानों का रुपया बढ़ा बचा। बाद में जो पानी 800 फीट पे था वो पानी 30-40-50 फीट पे आ गया और पूरे अगले गर्मी में वो गांव में ज्यादा से ज्यादा गर्मी के दिन में भी कोप लगा, तो वो सबसे बड़ा फायदा होता।
1: दिलीप भाई, आपने उस गांव में कैसे काम किया, जल संचय की कामगिरी के, जो जहां पर बोरवेल के मशीन ही आनी बंद हो गई?
0: बहुत सारे ऐसे गांव की उदाहरण है, लेकिन एक बात मैं अगर बताऊं, हमारा गिर गंगा का तरीका होता है। मैं मानना चाहता हूं कि लोगों को जागरूक, जैसे जन आंदोलन के बिना कामयाबी नहीं होगी, वो मेरा सूत्र है, तो लोगों को कैसे जोड़ा जाए, तो हमारा एक छोटा सा तरीका होता है। हम जब गांव में जाते हैं ना तो गांव को पहले देखने के बाद वहां पे एक मीटिंग करते हैं, लोगों को एक छोटी सी गांव सभा बोला जाता है, वहां पे हम समझाते हैं लोगों को पानी का महत्व समझाते हैं और वहां पे ही गांव की एक 10-11 लोगों की कमिटी बनाते हैं, वहां भी चैरिटी करते हैं और वो चैरिटी गांव में ही रखते हैं। वो चैरिटी का वही टीम के सदुपयोग करके हमने काम शुरू करते हैं। जिस गांव की बात की मैंने, एक वरणा की बात की, ऐसा एक टोडी गांव है, पावनगर डिस्ट्रिक्ट के सीहोर तालुका का टोडी गांव है, वहां पे एक विपस्याना केंद्र के जैन समाज के ग्रुप के आर्थिक सहयोग से वहां काम शुरू किया, जो समझना की बात है। उस गांव में भी पानी की यही हालत थी, क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी और वो डुंगराल प्रदेश का गांव, अगर बारिश, चौमासे के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासू पाक भी फेल हो जाता था।

0: लती क्षत्रिय समाज का गांव है, 800-900 फीट पे पानी, और वो डुंगराल प्रदेश का गांव। अगर बारिश चौमास के दिन में अगर बारिश कम होती है तो चौमासू पाक भी फेल हो जाता था। उस गांव में हमने एक सीरीज ऑफ डैम बनाना शुरू किया, एक ही गांव में 15-17 डैम बना पाए। इस साल हम गर्मी में गया था ना, तो वो पहले दूसरे तीसरे लास्ट वाले डैम से नदी बह रही थी गर्मी के दिन में। वो किसान की अगर वो प्रसंग हमको महसूस करना है ना, तो वहां को किसान को मिलना चाहिए। अगर किसान को पानी मिल जाए ना, तो उसकी 90% खुशियां मिल जाती है। तो वो हमने देखी, तो वो यहाँ की गांव की खुशियां अगर देखा जाए, क्योंकि पानी है सबको, 90 समस्या के एकमात्र विकल्प है तो पानी है। किसान क्या बोलते हैं ना कि पशु को खुराक मिलता है, पंखियों को चण मिलता है, लोगों को रोजगारी मिलती है, अच्छा अनाज पैदा होता है। हम क्या है ना कि हरियाली और खुशहाली गांव में अगर देखना है ना, तो पानी बचाना है। वो हमने नजदीक से देखा।
1: बहुत ही उम्दा तरीके से बताया जल संचय की कामगिरी। भरत भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने आसपास के लोगों को आप कैसे जल संचय की कामगिरी में आप लोगों को प्रेरित करते हैं।
2: जो भी पानी साहब ने जो बताया पहले, हर आदमी पानी बचाए और कम बिगाड़े, तो इस सूत्र है कि पानी जितना बिगाड़े इतना कम बिगड़े। ऐसी जो समझदारी की बात है, हम तो बिजनेसमैन है, खेती बाड़ी तो है नहीं, लेकिन उतना समय पानी बना भी नहीं सकते। बचाने की कोशिश करने की समझदारी सबको देते हैं।
1: हम जो सोसाइटी में रहते हैं, तो वहाँ पर शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार दोनों विस्तार है। तो आप जब भी सेमिनार का आयोजन करते हैं जल संचय के बारे में, तो शहरी विस्तार और ग्रामीण विस्तार, उसमें से आपको कैसा प्रतिभाव मिलता है?
2: जोत से जोत जलाने का मैं पहला काम करता हूँ, हर जगह मैं एक ही काम करता हूँ। दिलीप भाई को सुने और पानी बचाने क्या फायदा गैर फायदा होता है, उसके बारे में मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ। मालूम नहीं है, कभी टेस्ट नहीं किया तो मैंने, हमारी सोचा जब भी बात हुई मैं दिलीप भाई को बार बार बुलाता हूँ और जो सुनता है, सुनने जो भी प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा से आगे आगे बार काम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: पोस्ट बॉक्स नंबर 111 कार्यक्रम जारी रखते हुए दिलीप भाई से पूछेंगे कि आपके जल संचय की कामगिरी में आपको सरकार की ओर से किस तरह से सपोर्ट मिलता है?
0: हमारी गिर गंगा की जो पानी का काम में गवर्नमेंट की अगर बात किया जाए, तो वो पहले तो मैं सोच रहा था कि जब हम गांव में काम करने जाते हैं, तो गांव में क्या होता है, लोक भागीदारी से सब प्रकार का काम होता है। गांव में गेट भी बनता है, गांव में समाज भी की बाड़ी भी बनती है, गांव में बेंच भी लगाया जाता है, गांव में स्मशान भी अच्छी बनती है, गांव में मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो जाता है। लेकिन जब पानी की बात होती है, तो लोगों में साइकोलॉजी होती है कि क्या काम गवर्नमेंट करेंगे। तो इस विषय के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता था कि गवर्नमेंट करेगी ऐसा दिमाग में क्यों है। तो ये बात भी सही है कि जिस समय जिस काम किया था सब गवर्नमेंट में किया था, तो लोगों की मानसिकता में आया था कि पानी का काम गवर्नमेंट में। तो इस विषय में लोगों को भी भावना है कि गवर्नमेंट में इसमें जुड़े। तो जब हमारी संस्था का काम करना के शुरुआत की, तो हम तो लोक भागीदारी से लोगों को जोड़ना करते थे, लेकिन इस देश के बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी साहब ने जब सूत्र दिया, इस सूत्र को बार पहली बार हमारे देश में जल शक्ति मंत्रालय तैयार की, और इस मंत्रालय का काम कर रहे सीआर पाटिल साहब। सीआर पाटिल जी ने गिर गंगा परिवार को खूब प्रोत्साहित किया है, और कभी भी छोटे मोटे कोई भी प्रोग्राम गिर गंगा का होता है तो सर का आशीर्वाद रहता है। मेरे को मालूम है कि लोकसभा के अंदर भी सर ने गिर गंगा एनजीओ का नाम लिया कि वहां पे एनजीओ अच्छा काम कर रहे, राज्यसभा ने अंदर भी यहाँ के एमपीओ ने काम किया कि गिर गंगा अच्छा काम कर रहे। तो ये गवर्नमेंट के जो भी लोग गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, वो भी हमारी सराहना कर रहे थे। दूसरी बात, जल शक्ति मंत्रालय ने अगले साल बेस्ट एनजीओ का अवार्ड भी हमको गिर गंगा को दिया है। तो इससे क्या हुआ, हमारी प्रेरणा बढ़ी, हमको हिम्मत मिली। हम कहीं भी काम करते तो लोकल वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के जो भी कलेक्टर होते हैं, वो भी अधिकारियों को सूचना देते हैं कि गिर गंगा जब काम कर रही है तो हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जितनी भी मदद करेंगे लेकिन उसके काम में कहीं रुकावट नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से, इस होप के हिसाब से हम बड़ा काम कर पा रहे हैं। तो इस हिसाब से और आगे अभी भी नया नया प्रोजेक्ट गवर्नमेंट बना रही है कि इस साल कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से आर्थिक सहयोग भी कैसे मिल पाए। ये चल रहा है, लेकिन वो गवर्नमेंट की प्रोसेस होती है। ये प्रोसेस अगर खत्म होगी तो आर्थिक भी सहयोग कुछ ना कुछ मिलेंगे, लेकिन उसने जो हमको वो कहीं ना कहीं आर्थिक के बिना जो भी मदद की है वो बढ़िया की है, और इस हिसाब से काम आगे बढ़ रहा है।
1: दिलीप भाई, आप ये जो जल संचय कामगिरी कर रहे हैं, तो हमारे श्रोताओं को प्रेरणादायी बात बताइए और श्रोताओं के लिए संदेश भी बताइए।
0: मैंने पहले भी बोला था, लास्ट भी बोल रहा हूँ कि पानी कोई बना नहीं सकता, बिना पानी से काम हो नहीं सकता। पैर नहीं है फिर भी चलता है पानी, जीव नहीं है फिर भी जिंदा रहता है पानी। ये पानी की मूल्य है, ऐसा कीमती और अमूल्य पानी बचाना है वो गवर्नमेंट एक का काम नहीं है, हम देशवासी भारत देश के सभी लोगों का यह धर्म है। कि सभी को साइकिल चलानी है ना तो पानी की जरूरत है. बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े इंजीनियर फट फट के

0: इतना आगे बढ़ गए, इतने आगे बढ़ गए, वो मंगल और चंद्र पे चले गए, वहां जाकर भी पानी ढूंढ रहे, तो हम यहाँ पानी क्यों ना बचा पाए? तो ये पानी बचाने का सभी लोगों का धर्म है। तो गिरगंगा परिवार का तो एक ही ध्येय है कि हम मेरे जन्मदिन में डैम कैसे बना पाए। जब मेरे लड़के का जन्मदिन है तो उसमें डैम बनाए, जब मेरे स्वजनों की मृत्यु होती है, मेरे मम्मी और फादर, मेरे दादा दादी जो भी है, उसका नाम काम डैम क्यों ना बना पाए। ऐसे तरह से हम लोगों को जोड़ रहे हैं, समझा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को मैं बोलता हूं कि अगर राष्ट्र का विकास करना है, सभी समस्या का विकास करना है ना, तो आप पानी में ध्यान दीजिए। सभी कंपनी के CSR एक्टिविटी में अगर पानी पे लगाया जाए ना, तो देश की 90 समस्या खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी सहाय है ना, वो लोगों को आरसू कर रहे। मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूं। थोड़े दिन पहले अमेरिका का एक भाई हमारे संस्था पे आए, बोले मेरे को जल्दी है, मेरे पास वक्त नहीं है, आप एक मिनट में आपकी संस्था को समझा दो। मैंने बोला आप दो बड़े डोनर मेरे को ढूंढ के दीजिए जो 10-10 करोड़ रुपया लगाते हैं, मैं आपको अच्छे दो गांव दिखाऊंगा। एक गांव में आपको 10 करोड़ रुपया गांव की सुविधा के लिए लगाना, लोगों की सुविधा के लिए, कि वहां पे गेट बनाना है बड़े बड़े, वहां पे बेंच लगानी है, वहां पे गार्डन एक बनाना है, वहां की अगर स्मशान है उसको अच्छी डेवलप करनी है, लोगों को मैरिज के लिए एक वाड़ी बनानी है, वहां के जितने भी मंदिर है वो मंदिरों को जीर्णोद्धार करना है, नया बनाना है। और दूसरे गांव में 10 करोड़ मात्र के मात्र जल संचय में, कि वहां चेक डैम बनाना, तालाब बनाना, बोर रिचार्ज, कुआ रिचार्ज, डैम बड़ा करना है, तो सिर्फ के सिर्फ जल संचय में लगाना। 5 साल के बाद दोनों गांव की आप विजिट करने, क्या फर्क मिलेगा? जिस गांव आपके जड़ संचय के लिए आपने जो रुपया लगाए ना, उस गांव ने दूसरे गांव का 50% काम लोक भागीदारी से कर दिया होगा। और जिस गांव में आपने लोगों को सिर्फ सुविधा दी है, तो वहां के वही बेंच में बैठे बैठे वो हमारे राज्य के आगेवान को सिखाते रहेंगे कि इन लोगों को देश चलाना नहीं आता है। तो कहने का मेरा इरादा है कि पानी है तो खुशहाली है, तो पानी अगर मिल जाए ने, बाकी की सुविधा लोगों को आरसू करने की सुविधा है, तो बड़ी बड़ी कंपनी को मेरे हिसाब से पानी में ध्यान देना चाहिए, अपने अपने विस्तार में पानी लगाना चाहिए। मेरे वहां पे दो प्रसंग है छोटे। एक अमरेली डिस्ट्रिक्ट का एक किसान का फोन आया था कि दिलीप भाई, मैंने मेरी अगले साल दिकरी की शादी की थी, तो इस शादी में मैंने जो खर्चा तय किया था वो कर कसर से मैंने खर्च किया, तो इनमें से 2 से 2.5 लाख मेरा बचा, लेकिन मैंने रुपया तो दिकरी के नाम इकट्ठा किया था। मैं सोच रहा था एक साल से कि इस रुपया के मैं क्या करूं, लेकिन आपको सुनने के बाद मेरे को एक विचार आ रहा कि 2-2.5 लाख मेरे पास है, 2-2.5 लाख में और आपको ढूंढ के देता हूं। मैंने जिस गांव में दिकरी दिए ना, इस गांव में मेरे को 4-5 लाख रुपया का छोटे मोटा एक चेक डैम और तालाब बना दीजिए, मेरे को मेरी दिकरी को करियावर में वो गांव में चेक डैम देना है। अब विचार चला, मेरे जामनगर डिस्ट्रिक्ट में सोठा गांव के एक भी एक मीटिंग चल रही थी। कहने का मेरा इरादा है, सभी लोगों में अगर ये जागृति आए ने, तो और कामयाबी होगी। ऐसा दूसरा एक प्रसंग है, जामनगर डिस्ट्रिक्ट के कालावड़ तहसील का एक सोरठा गांव है, वहां पे चालू गांव की सभा में एक बुजुर्ग खड़े हुए मेरे साथ आके, वो मेरे को बोला कि आप सर 2 मिनट रुकिए, मेरे 2 लड़के इधर है, आप इसको खड़ा कीजिए। दोनों लड़के को खड़ा किया, तो वो बुजुर्ग ने क्या बोला, बुजुर्ग ने बोला कि खबरदार, मेरे मरने के बाद आपने कोई खर्चा किया है, अगर आपको मेरे पास कुछ करना है तो मेरे नाम का गांव का तालाब खोद डालना। तब मेरे को बहुत खुशियां मिली। ये अवेयरनेस है ना, वो जागृति का काम कर रही है। तो ऐसे छोटे मोटे अवेयरनेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं और हम इस गांव को आगे बढ़े रहे।
1: माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो स्तुत्व दिया है जल संचय से जन भागीदारी, और मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने उल्लेख किया है कैच द रेन, तो जल संचय के इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आकाशवाणी अहमदाबाद के स्टूडियोज में राजकोट स्थित गिरगंगा परिवार ट्रस्ट के स्थापक प्रमुख दिलीप भाई सखिया और साथ में ट्रस्टी भरत भाई टिलवा उद्योगपति, आप आकाशवाणी अहमदाबाद स्टूडियोज में आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।
2: कैच द रेन, बचपन में जब बारिश होती थी हम सब कागज की नाव बनाकर बहते पानी में छोड़ दिया करते थे और खूब खुश होते थे। लेकिन क्या कभी आज हमने ये सोचा कि जिस पानी को हम बहकर नदी नालों में जाते हुए देखते हैं, वही पानी अगर जमीन के अंदर चला जाए तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के बहुत काम आ सकता है। इसी सोच को हकीकत में बदलने के लिए राष्ट्रीय जल मिशन द्वारा शुरू किया गया एक बेहद खास अभियान कैच द रेन। कैच द रेन सिर्फ सरकार का कोई कागजी अभियान नहीं है, बल्कि ये हम सब की जिम्मेदारी और हमारे कल की सुरक्षा की चाबी है। छतों से टपकते पानी को सहेजना हो, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना हो, या अपने इलाके के सोखता गड्ढों की

0: वेल, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, द आकाशवाणी पॉडकास्ट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूं, और आपका होस्ट, आपका दोस्त आरजे गौतम तो आपके साथ जुड़ गया है, लेकिन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे साथ है जो जैसे ही आया ना स्टूडियो में, तो इनके बारे में बस यही कहना चाहूंगा कि दिल गार्डन गार्डन हो गया, पूरी ऑडियंस में भी उत्साह है। एंड इंडियन आइडल सीजन 16 के सेकंड रनर अप मनराज वीर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं पाजी आप?
1: आई एम वेरी गुड, आप कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया, चंगा एकदम। आप आ गए ना, मतलब बारिश का मौसम है, सुहावना मौसम है, और बातचीत करने के लिए जब आप आ गए हो। कहते हैं कि सपना एक देखो ना, मुश्किलें हजार आती है, लेकिन वो मंजर कितना खूबसूरत होता है जब कामयाबी शोर मचाती है। फॉर एग्जाम्पल, शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है,
1: बिल्कुल सही
0: लेकिन
1: कह
0: वो
1: रहे हो।
0: बचपन के सपने जब आप साकार करने के लिए निकलते हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? शुरुआत दिल्ली से हुई, लॉ की पढ़ाई की, उसके बाद म्यूजिक कैसे आया लाइफ में?
1: शुरुआत मेरी एक्चुअली मेरी फैमिली में म्यूजिक वाला कोई नहीं था स्टार्टिंग में, सिवाय मेरे चाचा के। तो
0: अच्छा,
1: जैसे कि मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि मेरे चाचा की वजह से मैं म्यूजिक लाइन में आया हूँ, क्योंकि वो स्टार्टिंग में जब जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तो लाइक वो भी जागरण होते हैं, माता की चौकी, इन सब में ना पहले ढोलक बजाते थे वो। और तो वो ढोलक घर में पड़ी रहती थी, ठीक है, ढोलक तबला ये सारे इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी घर में होते थे। तो मतलब कहीं ना कहीं उनको देख के ये थोड़ी सी अंदर रहता था कि यार ये क्या चीज़ है, कैसे बजाते हैं, कैसे बजता है। और जागरण में जाता था तो बहुत सारे सिंगर्स आके
0: ये
1: गाते हैं
0: किस एज
1: माता।
0: की बात कर रहे हैं आप? वैसे तो अभी
1: ये
0: भी बहुत यंग है
1: दिस
0: आप।
1: इज दिस इज दिस इज ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैं 7-8 साल, 7-8 साल के आसपास की बात है।
0: क्या बात है,
1: मतलब उस टाइम पे ये था कि देखना सिंगर्स को गाते हुए, देखना माइक पकड़ के गा रहे हैं, कैसा माता की भेंटे गा रहे हैं, और भी मतलब इतना सुरीला गा रहे हैं, ये कैसे कर रहे हैं, अच्छा, और इतना अच्छा कैसे लग रहा है सुनने में, इतने सारे म्यूजिशियंस एक साथ बजा रहे हैं, ये कितना अच्छा लग रहा है सुनने में। तो वहीं से थोड़ा सा बस ये कीड़ा म्यूजिक का धीरे धीरे जागा। फिर जैसे जैसे बड़ा होता गया, स्कूल में कॉम्पिटिशन्स होते गए, जैसे स्कूल में हाउसेज होते हैं ना, जैसे सैटरडे संडे को हाउसेज बनते
0: एक्टिविटी
1: हैं,
0: होती है वो एक दिन
1: एक्टिविटीज
0: रखा
1: होती
0: जाता
1: हैं,
0: है।
1: हाँ, किसी का रेड हाउस होता है, किसी का येल्लो ग्रीन, तो ऐसे हाउसेज में कंपटीशन होते थे, तो वहीं पे सिंगिंग कंपटीशन, डांस कंपटीशन, स्कूल मतलब स्कूल में होती है बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी, तो वहाँ पे कंपटीशन से पार्ट लेना। तो मुझे लगा कि यार यहाँ पे अगर मैं प्राइजेस जीत रहा हूँ तो मतलब कुछ तो अच्छा है आवाज़ में। तो वहीं से बस थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस आता गया, और म्यूज़िक सीखता गया, और अच्छे अच्छे गाने गाता गया। तो धीरे धीरे घर में भी पता लगा कि यार ये तो गाता है, इसकी तो आवाज़ में कुछ तो है। तो फिर मेरे चाचा ने मुझे वहां से थोड़ा थोड़ा जो बेसिक होते हैं, जो लेसन्स होते हैं ना सिंगिंग के, वो देना उन्होंने मुझे स्टार्ट किया वहां से। तो वहां से फिर मेरा थोड़ा और इंटरेस्ट आता गया। फिर वहां से कॉलेज, मतलब जब जब मैंने 12th पास आउट की, उसके बाद मैं गया DU में, शिवाजी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां पे मतलब उससे पहले मेरे पास दो तीन ऑप्शन और थे, जैसे NDA के एग्जाम दिए मैंने, एंड मतलब बहुत सारे, मतलब कि कभी मैं ऑफिसर बन जाऊं, कभी गवर्नमेंट ऑफिसर बन जाऊं, कभी अभी कभी मेरा एडमिशन हो रहा था वहाँ पे चंडीगढ़ एस्ट्रोनॉटिकल्स कॉलेज में, बीच में सोच लिया मैं पायलट बन जाऊँगा, पता नहीं क्या क्या सोचा। फिर उसके बाद बेसिकली अंदर से समझ में आया कि नहीं यार, मुझे म्यूज़िक ही पसंद है, और अगर मुझे कुछ करना है तो म्यूज़िक में ही करना है। तो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया कि नहीं यार पापा, मैं जा रहा हूँ DU में। तो DU में क्या होता है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ बहुत होती है, आपको पता ही है, जो मतलब काफ़ी सारे मतलब एक्टिंग सोसाइटी होती है, म्यूज़िक सोसाइटी होती है। तो एडमिशन लेते के नेक्स्ट, मतलब एडमिशन आज फॉर एग्जांपल मैंने एडमिशन लिया, कल ही मुझे पता लगा कल ऑडिशन चल रहे हैं रिवर्ब सोसाइटी के, जो हमारी म्यूजिक सोसाइटी है कॉलेज में। तो मैं खुश, मैं कहा यार ये तो बेस्ट हो गया। वहाँ जाके ऑडिशन दिया, मतलब उन सब के अंदर के ऑडिशन होते हैं, वो ऑडिशन मैंने क्लियर कर लिया, और मैं खुश, मैं कहा मेरा तो एडमिशन आज हो गया, मैं म्यूजिक सोसाइटी में आ गया, मेरा एडमिशन हो गया। तो वहीं से फिर कॉलेज कंपटीशन स्टार्ट हुए। फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे सीनियर्स होते हैं उनको भी बहुत नॉलेज होती है म्यूज़िक की, तो फिर वहाँ से उनसे भी सीखना मैंने चालू कर दिया। तो मतलब ऐसा कोई एक इंसान नहीं है जिससे मैंने कभी सीखा लाइफ में, तो बहुत सारे हैं, मतलब बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आपने कहाँ से सीखा है। तो मैं इनको यही कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, मेरे चाचा हो गए या जितने भी अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस हो गए, जो मेरे सीनियर्स हैं, जो गुरु, मतलब मैं जिनसे भी आज तक मतलब मैं मिला हूँ म्यूजिकली, उनसे मैंने थोड़ा थोड़ा थोड़ा थोड़ा करके मतलब उनको पता भी नहीं हो, मतलब उनको आइडिया भी नहीं।

0: हुआ कि मैंने उनसे सीख लिया, बट मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल आपसे बात कर रहा हूँ,
1: जी
0: कुछ चीज़ें मुझे अगर आपकी अच्छी लगेंगी तो मैं आपसे ग्रैब कर लूँ, आपको पता भी नहीं लगेगा,
1: नहीं,
0: तो
1: देखो
0: बस
1: मैंने
0: वो है।
1: कोशिश की है कि मैं आज थोड़ा सच धज के आऊं, लेकिन स्टाइलिस्ट जो है, अगर बात करें या फिर स्टाइलिश किंग की बात करें, तो आपको ज्यादा टाइटल सूट करता है
0: नहीं,
1: कहीं ना कहीं। इंडियन आइडल में
0: अभी तो
1: मिला है आपको ये
0: नॉर्मल।
1: खिताब, है
0: जी
1: ना,
0: जी
1: रोमांटिक किंग भी कहा जाता है। एंड हम प्रोडक्शन की भी बात करते हैं, हम कंपोजिशन की भी बात करते हैं, हम सिंगिंग की भी बात करते हैं, इतनी सारी चीजें एक साथ कैसे लेकर आते हैं आप? और ये टर्न जो था, ये आई थिंक ये कोविड के टाइम में आया था।
0: ये नहीं, ऐसा नहीं कह सकते,
1: हाँ हाँ
0: मतलब हाँ होता है, क्योंकि देखो अंदर एक स्टार्टिंग से कीड़ा रहा है अंदर कि मुझे अपना म्यूजिक बनाना है, मेरे को इंडिपेंडेंटली म्यूजिक बनाना है, अपने गाने बनाने हैं, लाइक अपनी जो क्रिएशन है वो लोगों को सुनानी है। अब जो गाने ऑलरेडी जिन्होंने बनाए हैं वो तो बने ही हैं, वो तो हम गाते ही हैं, लोगों को मतलब ऑलरेडी पसंद है, बट जो एज ए म्यूजिक कंपोजर एक ना विजन होती है कि मैं चाहता हूँ कि यार इस टॉपिक पे ये गाना बनाऊँ क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है, अभी मेरा मन कर रहा तो मैं लोगों को कुछ मोटिवेट करना चाहता हूँ अपने गाने के फॉर्म में, ये मोटिवेट करना है, या मुझे इस तरीके का प्यार फील हो रहा है, क्या यही लोगों को होता है, चलो यार इसके ऊपर भी गाना बना के देखते हैं। मतलब ये कि जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपकी है क्रिएशन है, वो मैं चाहता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। तो मतलब म्यूज़िक मेरे लिए खाली गाना ही नहीं है, म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो लोग फील करते हैं, लाइक म्यूज़िक में हर इमोशन होता है, सैड होता है, रोमांटिक होता है, एनर्जी हो गई, डांस हो गया, एवरीथिंग, तो हर चीज़ फील होनी लोगों को ज़रूरी है, म्यूज़िक इज़ अ फीलिंग, मतलब कहते हैं ना कि म्यूज़िक हील करता है, तो वो हील तभी करेगा जब जब वो आपकी फील पकड़ेगा अंदर की, है ना। तो मेरा बस यही रहता है कि यार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से अगर मुझे कनेक्ट करना है तो मुझे अच्छे अच्छे और उनकी जो लाइफ में हुआ है वो सारे सिनेरियोज देख के मुझे डांस पे भी गाने बनाने हैं, मुझे सैड भी बनाने हैं, मतलब लोग फील कर पाए।
1: चलिए, आपने हीलिंग की बात कही है। एक बात कही जाती है कि मुश्किल रास्तों पर भी आसान यह सफर लगता है, माँ की दुआओं का असर लगता है। माता जी की
0: बिल्कुल।
1: तबीयत अब कैसी है और उनका योगदान कितना रहा है? जब भी आपके लाइव शो में आती थी, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती थी।
0: मॉम का मेरा थोड़ा ऐसा ही है, वो बहुत इमोशनल है, उनको बहुत दिक्कत भी है, जैसे उनको सांस की दिक्कत है, उनके लंग की जो लंग्स एक होता है ना, मतलब नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की लंग कैपेसिटी होती है वो अगर 100% है तो उनकी वो 35-40% है, तो और ऊपर से पोल्यूशन, मतलब ये सारी चीज़ें हैं, तो काफ़ी सांस लेने में काफ़ी दिक्कत होती है उन्हें, और कुछ भी थोड़ा सा भी काम करेंगे तो सांस फूल जाती है। तो अब ऐसी सिचुएशन में उनके माइंड में ना बहुत कुछ चलता है, आप मतलब बिफोर आइडल उनके माइंड में ये चलता रहता था कि यार ये क्या सक्सेस होगा भी कि नहीं होगा लाइफ में, क्योंकि मेरी फैमिली में से मुझे आज तक किसी ने रोका नहीं, अगर फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मिडिल क्लास फैमिलीज में क्या होता है कि लोग थोड़े थोड़े मतलब स्टेप बैक करते हैं कि नहीं यार तू ये काम मत कर, नहीं तू ऐसा ही कर, नहीं होगा इसमें कुछ तेरा, तो मतलब मुझे ऐसा कभी रिस्पॉन्स मिला नहीं मेरी फैमिली से कि यार बोले कि नहीं यार तू मतलब सब बहुत सपोर्टिव रहे हैं, और सबसे बड़ा सपोर्टिव इंसान मेरी लाइफ में रहा है वो है मेरी माँ। मुझे ऐसा लगता है कि एक एक ना बैक एंड पे चीज़ चल रही होती है ना मेरे, जो जो मेरी बैक के पीछे जो मुझे सपोर्ट हर टाइम जो मुझे दे रहा होता है वो मेरी मम्मी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ मेरे पापा को डाउट है तो वो मेरे से पूछेंगे नहीं, वो पहले ही डाउट उनका मम्मी ने क्लियर कर दिया कि नहीं ये करेगा उसमें ऐसे ऐसे करना, हो गया खत्म,
1: वो साथ है हमेशा।
0: मतलब मुझे उस बारे में बात ही नहीं करनी। अगर मेरे दादा ने कुछ पूछा है कि यार मनराज के साथ ये, तो मेरे से पहले मम्मी आके बोल देंगी लो ये ऐसे ऐसे होगा, ये ऐसे ऐसे कर ले खत्म,
1: वैसे
0: मतलब
1: माँ और
0: एक
1: फैमिली का जब जिक्र आता है तो हर कोई जो है काफी इमोशनल हो जाता है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जब माँ का जिक्र आए या माँ की तस्वीर सामने आए, तो कोई गाना आपके जहन में आता है यार माँ को लेकर जो डेडिकेट करना चाहे? आई एम श्योर के स्टूडियो में जितने लोग हैं या शो भी जो लोग सुन रहे हैं वो भी सुनना चाहेंगे, कोई भी एक भाव।
0: ओके, आते तो वैसे बहुत सारे हैं
1: हाँ,
0: बट अभी कौन सा भाव सुना मुझे ये नहीं समझ में आ रहा
1: जो भी मतलब प्यार से रोमांटिक किंग तो आपको कहा ही जाता है, लेकिन हाँ ये मतलब जो आपके बहुत करीब है।
0: है। अगर ऐसा अगर कुछ वो करना है, रिलेट करना है, तो एक गाना है मेरे पास, मेरा फेवरेट भी है,
1: जी
0: तो वैसे तो वो गाना मतलब अपने लवर के लिए गाते हैं, बट उस गाने का मीनिंग मेरे लिए आप ये कह सकते हो कि मेरी माँ है, तो मैं सुनाता हूँ।

0: क्या बात है, बहुत ही
1: थैंक यू
0: खूबसूरत, क्या कमाल की आवाज है आपकी. एंड
1: थैंक यू।
0: कमाल तो आप करके भी आए इंडियन आइडल में, लेकिन बैक ऑफ द स्टेज क्या क्या होता है, क्या मस्ती होती है, क्या मजाक होते हैं, एंड प्रेशर होता
1: बहुत प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा।
0: है.
1: बहुत ज्यादा। वो टीवी पे देखने में लगता नहीं हो, मतलब लगता नहीं है लोगों को, बट बैक स्टेज की अगर मैं स्टोरी बताऊं तो बहुत प्रेशर होता है भाई। देखो, मतलब मुझे पता लगा है कि अभी 1 घंटे बाद मेरी परफॉर्मेंस है, तो वो एंग्जाइटी और वो जो नर्वसनेस ना, वो 1 घंटे पहले आनी स्टार्ट हो जाती है। उसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ क्यों। क्या होता है कि हमारी जो परफॉर्मेंस टाइमिंग होती है 4 से 5 मिनट, हमें 5 मिनट में अपना बेस्ट देना है वहाँ पे स्टेज पे। अब आपके पीछे इतने सारे लाइट्स वाले सब कुछ सेटअप हो रहा है, 1 घंटे तक साउंड चेक चल रहा है। अब साउंड चेक होने के बाद आपके पास 5 मिनट है, या तो अच्छा होगा या तो बुरा होगा। ठीक है, मैं तो चाहूंगा कि अच्छा ही हो, बुरा हो गया तो फिर जजेस के स्कोर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यही रहता था कि यार गलती ना हो जाए, यार मैम क्या मुझे लिरिक्स याद हैं। मैं मतलब रट के देखना, कभी कभार तो हाथ पे लिख लेते थे कुछ, एक आधा वर्ड होता था ना जो हमेशा अटकता था गाने में,
0: आजकल वो कैमरे में पता लग जाता पर ना.
1: नहीं पता लगता। मतलब ये ना सिंगर ही समझ सकता है, जैसे गानों में चार चार अंतरे हम गा रहे हैं। अब मैं यहाँ पे अगर कोई, मैं यहाँ बैठ के कोई गाना गा रहा हूँ, कुछ एक आधा वर्ड ऊपर नीचे भी होता है तो चलता है, अभी कोई जज नहीं कर रहा है बैठ के। लेकिन अभी वहां पे क्या होता है कि पहला अंतरा सही गा दिया, दूसरा सही गा दिया, तीसरा सही गा दिया, जब चौथे की बारी आती है तो भूल जाते हैं कि लिरिक्स है क्या। तो उसके लिए कुछ ना एक, मतलब कुछ एक मार्क लगा के मैंने एक दो बार किया ऐसा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा कोई वर्ड मुझे याद नहीं रहता, या अंतरे का पहला वर्ड कभी कभार क्या होता है ना याद आता है, तो पूरा अंतरा याद आ जाता है। तो जो जो अंतरा मुझे याद नहीं रहता था, उसका पहला वर्ड मैंने लिखा, कहा हाँ अभी अगला ये है, ठीक है, याद आ गया वर्ड देखते पूरा अंतरा। तो ऐसा होता है सबके साथ, क्योंकि देख के तो नहीं गा सकते आपको, ना आपको टेलीप्रॉम्प्टर मिलेगा ना आपको कुछ मिलेगा, आपको तो
0: चलो, हाथ
1: गाना
0: पे
1: गाना
0: लिखा
1: है।
0: है कि आपने बात कही, आपका टैटू भी काफी अच्छा लग रहा है,
1: थैंक यू सो
0: ये
1: मच।
0: आपने
1: थैंक
0: लेटेस्ट करवाया अभी?
1: ये, हाँ मैंने अभी टैटू लेटेस्ट करवाया, कल ही करवा के आया हूँ।
0: अच्छा, क्या लिखा हुआ है इस पर?
1: इस पे मैंने लिखा है वन लव, दिस इज वन लव,
0: ओके,
1: और उसके
0: कुछ नीचे
1: नीचे
0: डेट ऑफ बर्थ भी है आई गेस कुछ.
1: या वन लव, और उसके नीचे मेरी मम्मी का सन ऑफ बर्थ है रोमन नंबर्स में।
0: ओ
1: एक मेरे टैटू यहाँ पे शोल्डर पे है, जिसमें मेरे फादर का है सन ऑफ बर्थ, और ये इसमें मेरी मम्मी का।
0: क्या बात है, तो उनको
1: थैंक
0: दिखाया,
1: यू।
0: माता जी का
1: हाँ
0: क्या कहना था?
1: देखो, पहले तो उनको टैटू से बहुत प्रॉब्लम थी,
0: हर
1: ठीक है,
0: पेरेंट्स को होती है कहीं ना
1: हाँ
0: कहीं.
1: होती है। तो जब उन्हें पता लगा, अच्छा मेरी सन ऑफ बर्थ लिखवाई है, फिर ठीक है बढ़िया है। तो ये मेरा ब्रह्मास्त्र है
0: क्या बात है,
1: टैटू।
0: कहते ना इशक होता है हीरे अदेवर्दा, रब
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: छुपाई दावे साजना. द ग्रेट लेजेंड सतेंद्र सरताज,
1: जी
0: उनके साथ परफॉर्म करने का मौका मिला है आपको,
1: जी
0: कैसी फीलिंग थी, आपने कैसे, मतलब क्या भाव थे, नर्वसनेस उस दौरान थी एक लेजेंड के साथ परफॉर्म करना?
1: नर्वसनेस तो नहीं बोलूंगा मैं, बट उस टाइम मैं बहुत ब्लेस्ड था। एक्चुअली एक हमारा एपिसोड था रीयूनियन, जिसकी आप बात कर रहे हो,
0: जी
1: रीयूनियन एपिसोड था, उसमें आए थे वो। और क्या होता ना कि जैसे मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, सिख कम्युनिटी, एंड मतलब पंजाबियों के लिए, नॉट ओनली सिख, पूरे पंजाब के लिए, मतलब देश भर में और जितने, मतलब पूरी दुनिया भर में जितने पंजाबी हैं सबके लिए सतिंदर सरताज बहुत बड़ा नाम है ना। क्योंकि उनकी जो गायकी है वो खाली गायकी नहीं है, उनकी उनकी उनकी गायकी में भी लेसन्स हैं। वो जो लिखते हैं, वो जो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनकी गायकी में लेसन्स हैं। तो बहुत पहले से, लाइक जब मैं कॉलेज में था, आई थिंक 17-18 साल का था, तब से उनका जो, मतलब गाने उडारियाँ हो गया, सज्जन राधे जिसके आप बापी, जो अभी आप गाना गा रहे थे, तो सबके गाने के लिरिक्स आप देखोगे ना, अगर आप सोचने समझने जाओगे कि इन्होंने बोला क्या है, मतलब गाने से ज़्यादा लिरिक्स आपके दिल में बैठ जाएंगे, फिर आप और प्यार करोगे उनसे। तो वही ब्लेसिंग थी, वही एक ऐसा बोल सकते हो कि हाथ था सर पे ऊपर वाले का, कि उनके साथ मुझे परफॉर्म करने का मौका मिला। और बातों बातों में उन्होंने बहुत कुछ सिखाया भी।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: बैक ऑफ
1: जैसे
0: द स्टेज भी काफी बातें हुई होंगी उनसे.
1: बैक ऑफ द स्टेज यही बातें होती हैं कि, मतलब बैक ऑफ द स्टेज मोस्टली क्या होता है कि टीवी पे नहीं दिखाते कि जजेस हमें आके बता रहे हैं या आपको कुछ सिखा रहे हैं। तो बैक स्टेज में यही होता है कि मेरी परफॉर्मेंस फॉर एग्जाम्पल ख़त्म हुई, अगर मुझे कुछ पूछना है तो मैं जा सकता हूँ जजेस के पास भी, यार मैंने ये चीज़ ऐसे करी।
0: फीडबैक के लिए.
1: जैसे जैसे गाने के बीच में कोई भी, जैसे इम्प्रॉम्प्टू पार्ट डाला, जैसे वो भी कह रहे थे कि तबले का आप डालते हो बीच में, अच्छा लगता है ये सब।

0: तो ये
1: फ्यूजन और वेरिएशन
0: मुझे
1: का
0: भी कहीं ना
1: फर्क है।
0: कहीं मतलब वो डर रहता था, मतलब जो हमारे मेंटर हैं आनंद सर, जो इंडियन आइडल जो सबकी तैयारी करवाते हैं बैक स्टेज, तो मतलब उनसे सबसे पहले तो उनसे पूछना कि सर इसमें कुछ ऐसा करते हैं, तो वो भी आइडियाज लगा के हम कुछ आपस में वो उसको बनाते थे। तो मेरी फिर ये सब करने के बाद टेंशन ये कि क्या ये जजेस को पसंद आएगा। देखो ऑडियंस का तो बाद में है, लेकिन पहले जो बैठे हैं उनको पसंद आना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस एक दो बार खत्म होने के बाद में जाता था कि मैं सर ये पार्ट कैसा लगा, सर ये मैम ये मतलब श्रेया मैम, विशाल सर, बादशाह बाजी, तो उनसे पूछते थे कि ये आपको पार्ट कैसा लगा। कि हाँ यार मज़ा आ गया। कभी कभार तो परफॉर्मेंस के दौरान ही खड़े होते कि भाई यार क्या कर दिया, मज़ा आ गया। बैक स्टेज यही सारी चीज़ें चलती है, और सतेंद्र पाजी के साथ भी सेम यही चीज़। उन्होंने मुझे उस एपिसोड में ब्रॉच, जो पगड़ी ब्रॉच वो डालते हैं,
1: जी,
0: वो भी उन्होंने गिफ्ट किया था मुझे।
1: वो हर परफॉर्मेंस में लेके आते हैं
0: हाँ
1: आप।
0: वो डालते ही हैं,
1: ओ
0: उनका जो भी गेटअप रहता है शोज का वो डालते हैं। तो मतलब उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और बातों बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई इंडस्ट्री के बारे में। एक तो उनके बोलने का तरीका, उनका लहजा ऐसा है कि हर कोई पिघल जाएगा, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई। तो उनसे ये भी बहुत सीखने को मिला कि सबके साथ नरमी से पेश आओ,
1: डाउन टू अर्थ
0: डाउन
1: बिहेवियर
0: टू अर्थ
1: काफी
0: रहो।
1: उनका।
0: यस, तो ये सब चीज़ बैक स्टेज ये सब चलता है।
1: क्या बात है। कोई ऐसे लम्हे, कोई फनी किस्सा जो मतलब किसी के साथ आपने शेयर ना किया हो, यहां पर करना चाहे, चलते लाइव शो में हुआ हो या फिर जजेस के साथ।
0: फनी किस्सा ये है कि एक मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान के का, आई थिंक वो एलिमिनेशन एपिसोड था, टॉप 10 का एलिमिनेशन एपिसोड था वो। उसमें मैंने गाना गाया था ओ मेरी जान। तो क्या हुआ कि मैं बहुत एक्साइटेड हो गया स्टेज पे, और वो ना स्टेज पे पीछे से जो आइस होती है ना, ड्राई आइस जो आप देखते हो कि धुआं धुआं आता है, वो होती है ड्राई आइस, तो वो आ रही थी स्टेज पे पीछे से। तो मैं वहाँ पे कूद कूद के गाना गा रहा हूँ मस्त, बिल्कुल रॉकस्टार बन के। साथ में गिटार पे शांतनु भाई खड़े हैं, वो अपने गिटार बजा रहे हैं। तो क्या हो गया, अंतरा खत्म हुआ। अंतरे के बाद ना एक पोर्शन आता है जहाँ पे बहुत हाई कुछ गाना होता है, तो उसको गाने के लिए मैं एकदम ऐसे पीछे हुआ तो मैं स्टेज पर गिर गया। वो टी फिंग
1: चलते
0: दिखा।
1: शो में।
0: हाँ
1: अच्छा
0: तो वो बड़ा फनी था, और फटाफट गिर के मैं उठ के दोबारा गाने लग गया, नाता समझे ना ये दिल मेरा। तो फिर सब देख रहे हैं। हाँ यार, तो मतलब ये सब चीज़ें फनी होती रहती है बीच बीच में, ये टीवी पे आया नहीं।
1: वेल, उतार चढ़ाव तो लाइफ में होते हैं, लेकिन मौसम कितना मतलब मिजाज चेंज करता है। दिल्ली की बात कर लो आप, दिल्ली से शुरुआत आपकी हुई है एंड शुरुआती दौर में आप यूट्यूबर भी रहे हैं, आई गेस यूट्यूब से आपने शुरुआत की थी।
0: यूट्यूब नहीं, मैं मतलब वैसे यूट्यूबर नहीं हूँ, बट हमारा हम जैसे मारविक बैठा, देखो आप मतलब हम दोनों सेम ही क्लास में थे, और लोगों को पता है। अभी फॉर एग्जांपल आइडल में भी मैंने एक गाना किया था बरसात, बरसात गाना आपने देखा होगा, जिस मतलब
1: जी
0: आइडल
1: जी
0: में पहली बार हुआ था कि किसने अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म किया है। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं
1: ऐसा बहुत
0: थैंकफुल,
1: कम होता है ऐसा।
0: ऐसा ऐसा बहुत कम है, ऐसा होता ही नहीं है कि आइडल में कोई भी कंटेस्टेंट अपना ओरिजिनल गाना परफॉर्म कर रहा है। तो वो मौका मुझे मिला, मैं बहुत ग्रेटफुल था उस टाइम पे। और तो फिर वो गाना मारविक ने ही लिखा था, मैंने गाया, तो हम दोनों स्टार्टिंग से ही काम कर रहे हैं साथ में। और तो गाने बनाते हैं हम, गाने बना के सेल करते हैं। हमें ऑलरेडी, हम कॉलेज में मिले थे तो कॉलेज से ही स्टार्ट कर दिया था हमने, तो वहीं से फिर हमने सोचा कि अपने गाने बना के यूट्यूब पर भी डालते हैं। तो हमारा चैनल भी है द ट्विस्टी ट्यून्स नाम से, तो वहीं पे हमारे गाने भी आते हैं। तो हम मतलब शुरुआत सब मतलब हर किसी म्यूजिशियन की शुरुआत ऐसे ही होती है, कहीं तो इंस्टा पे डालेगा, साउंड क्लाउड पे या यूट्यूब पे। तो कुछ हमने भी ऐसी करी शुरुआत अपनी।
1: कॉमेडी किंग भी आपसे मिले थे, द कपिल शर्मा,
0: हाँ
1: एंड उन्होंने एक बहुत अच्छी बात आपको कही
0: बहुत
1: थी
0: ही
1: कि
0: अच्छा एपिसोड
1: पाजी,
0: था वो।
1: हाँ कि पाजी इतनी सारी चीजें आप कैसे करते हो, कंपोजिशन भी खुद कर लेते हो, गायकी तो कर ही रहे हो एंड प्रोडक्शन में भी हो, ये मल्टीटास्किंग कैसे हो पाती है?
0: मल्टीटास्किंग ऐसे हो पाते है क्योंकि दिल बोलता है करने को। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई वो नहीं है कि कोई चार्ट मुझे फॉलो करना है, ये करना है, बस वो दिल से आता है। मतलब मेरे अंदर एक ये है, मतलब जो एक आग रहती है ना अंदर की, मुझे ये काम करना है तो करना है। अब मैंने सोचा है कि अगर मुझे म्यूजिक बनाना है तो वो मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा। अगर मैं उस चीज़ में नहीं हाथ बढ़ाऊंगा तो फिर मतलब उसका फायदा ही नहीं है वो, मैं उस चीज़ को कैसे पूरा करूंगा, कैसे गाने बनाऊंगा। तो गाने बनाना है, म्यूजिक प्रोडक्शन करना। अब गाने बनाने के लिए ये सारी चीज़ें आनी चाहिए कि म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग क्या होता है, म्यूजिक कॉम्पोजिशन क्या होती है, म्यूजिक अरेंजमेंट्स क्या होती है, गाने को किस तरीके से गाना है, कितने स्टाइल में गाना है। तो जब मुझे ये पता है कि गाना बनाना है, तो फिर मेरे अंदर अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो चीज़ आ गई कि गाने को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ करनी है, और अगर मुझे कोई चीज़ उनमें से नहीं आती तो वो मुझे सीखना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: फिर
1: है।
0: वो ऑटोमेटिकली आ जाता अंदर से।
1: हाँ, कपिल शर्मा एपिसोड के बारे में भी आप कुछ बता रहे थे। हाँ,
0: वो मैं एपिसोड की बात कर रहा था, एपिसोड बहुत अच्छा था वो, बहुत ही एनर्जेटिक एपिसोड था। उनकी तो एनर्जी ऑलरेडी आप सबको पता है, पूरे इंडिया को पता है उनकी एनर्जी कैसी है। तो जब मतलब उससे जब वो आए,

0: हाफ डे शूटिंग का काफी शांत, मैं बोलूँ तो बोरिंग चल रहा था। वो जैसे ही वो आए, जो हाफ एपिसोड में वो आए, तो मतलब एनर्जी लेवल ही चेंज हो गया। फिर हमारा गाने का एनर्जी लेवल भी चेंज हो गया। फिर अपने आप को प्रेजेंट करने, एक होता है ना पंजाबी जब आ जाता है तो फिर सबको पता ही एनर्जी का क्या होता है, वही वाली
1: लाइव में
0: बात
1: तो
0: है।
1: उन्होंने जो कहा वो सबने सुना, लेकिन
0: हाँ
1: लाइव के बगैर अगर हम बात करें तो उनसे बात हुई?
0: नहीं, उनसे मेरी ज्यादा बात नहीं हुई, मतलब ऑन
1: अच्छा
0: स्टेज ही बात होती। जैसे उनके साथ मैंने छल्ला गाना गाया था, तो जब साउंड चेक हो रहा होता है तो हमारे पास आधा पौना घंटा होता है साउंड चेक करने के लिए, तो वही
1: ओके
0: दोनों खड़े हुए थे स्टेज पे, हम लोग बात कर रहे थे बस उतना।
1: बहुत अच्छी बात है। एंड सबसे फेवरेट मेरा पता है कौन सा था, जब आप गा रहे थे आपने सिंगिंग शुरू की थी, हेमा मालिनी एकदम खड़ी हो गई थी, वो एकदम उनके लिए शॉकिंग था, और मतलब एक अलग ही गूज़बम्प ऑडियंस को भी आ गए थे। वो क्या था, वो शेयर करना चाहेंगे, वो कैसी फीलिंग थी?
0: बहुत नहीं, एक्चुअली क्या होता है कभी कभार, तो मैं अपनी परफॉर्मेंसेस, मैं जब भी गा रहा होता हूँ ना, आप मेरी मोस्टली वीडियोस देखोगे, मेरी आंख बंद रहती है, मेरा ध्यान सिर्फ गायकी पे होता है कि मेरे सुर ठीक लग जाएं, मैं लिरिक सही गा दूं, मेरा ध्यान ऐसे ही होता है। तो बाद में लोग कहते हैं, फॉर एग्जांपल आप मुझे पॉइंट आउट कर रहे हो ना ऐसे ही, वो यार मैम तो खड़े हो गए थे, या मैम बीच में खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, श्रेया मैम खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं आधे गाने में, का अच्छा, क्योंकि मेरी तो आंख बंद रहती है, मैं गाने पे ध्यान रहता है मेरा बस, बाद में फिर मैं देखता हूँ कि अच्छा ऐसा हो गया था, तो मतलब अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि बस मेरा फोकस यही रहता है कि मैं अच्छे से गाऊं, और वो तो बाद में टेलीकास्ट में देखता हूँ, अच्छा ये रिएक्शन था क्या, ओ नाइस, मुझे पता होता तो मैं स्टेज पे थोड़ा ओवर रिएक्ट
1: ये तो होता है ना, मतलब
0: करता।
1: कॉम्प्लीमेंट हर किसी को पसंद होते हैं, लेकिन कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट जिसने लाइफ एकदम बदल दी हो, जजेस ने आप पर्सनली आके आपसे बात की हो और आपको लगा ये वाली जो राय है ना, ये मेरे साथ रहेगी हमेशा।
0: तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जजेस स्पेशली जब खड़े होते हैं तो वही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है कि आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। आई थिंक मुझे श्रेया मैम से, विशाल डडलानी सर से, बादशाह बाजी, ये तीनों खड़े हो गए, आपको स्टैंडिंग ओवेशन मिल रही है। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि जब आपके म्यूज़िक को जब कोई पहचान लेता है, तो लास्ट फिनाले एपिसोड में बादशाह बाजी ने बोला कि यार ये बंदा, जैसे हम लोग, मतलब वो अपने आप को भी और जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, करण औजला, दिलजीत दोसांझ, इन सबको पॉइंट आउट, मतलब बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने बड़े बड़े अरेनाज फिल करे हैं, शोज होते हैं हमारे सोल्ड आउट, तो तुम भी करोगे, उन्होंने मुझे बोला। तो क्या होता है जब इतना बड़ा आर्टिस्ट जब आपको ये चीज़ बोल देता है ना, तो आपका भी कॉन्फिडेंस, मतलब एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार शायद, मतलब जैसे इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री के इतने बड़े बड़े लोगों ने अपना लिया ना, तो इसका मतलब यू आर अ पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है। अब अगर कोई आपको कंपेयर कर रहा है कि यार आज दिलजीत दोसांझ पाजी ने या करण औजला पाजी ने ये सब फिल किया है ना, तो तुम भी कर सकते हो। मतलब आज से 2-3 साल पहले क्या होता था कि वैलिडेशन चाहिए होती थी कि यार कोई भी हमें देखे, कोई बड़ा जो स्टार आया है उस, मतलब उसकी नज़रों में आ जाए, है ना, मतलब यही सपना रहता था कि यार क्या इन्हें पता भी है हम यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, क्या बादशाह बाजी को पता होगा, क्या दिलजीत को पता है कि भाई मैं, मतलब मनराज कौन है, हमें तो पता है दिलजीत दोसांझ कौन है, ठीक है,
1: बिल्कुल
0: पर क्या उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ। अब जब ऐसा फील होता है ना कि नहीं पूरी इंडस्ट्री को पता है कि मनराज वीर कौन है, तो
1: राइट
0: एक वो सेटिस्फेक्शन और एक वो कॉन्फिडेंस ना वो अंदर आ जाता है। और मतलब बहुत सारी चीज़ें बोली हैं मुझे, विशाल सर ने भी बोला कि यार यू आर अ रॉक स्टार, ठीक है, आपकी बहुत यूनिक आवाज़ है, ठीक है। श्रेया मैम ने बोला कि यार इंडियन आइडल में, कि आप इस सीजन के इंडियन आइडल की खोज हो, तो इतनी इतने बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स जब मिलते हैं ना, तो बस एक ये है कि अंदर और काम करने की इच्छा आ जाती है,
1: वो जब
0: वो कभी
1: कॉम्प्लीमेंट मिला
0: मरने।
1: आपको बादशाह पाजी से, वो वाला गाना एक बार हो जाए, कम ऑन, हमारी ऑडियंस के लिए हो जाए, लिसनर्स के लिए हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, एक्चुअली वो गाने से पहले मिला था, बट मैं गाना गा देता हूँ। एक्चुअली वो वही गाना था जो मैंने ऑडिशन में गाया, फिरता रहूँ दर
1: ओ
0: बदर। तो क्या था कि ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था इंडियन आइडल पे। लास्ट में क्या होता है कि जो टॉप 3 थे हम सबको अपने अपने जर्नी के पहले पहले सॉन्ग परफॉर्म करने थे, तो मैंने भी यही परफॉर्म किया था, तो उन्होंने इससे पहले ये बात बोली थी, और तो मैं ये गाना गाता हूँ भाई।

0: सिंगर कौन है, या कोई इंटरनेशनल सिंगर जिसने बहुत यू नो इंस्पायर किया हो आपको लाइफ में?
1: इंटरनेशनल, पहले तो मैं इंडियन इंडियन की बात करता हूँ.
0: जी
1: इंडियन में जो सबसे पहली मेरी जो इंस्पिरेशन है वो तो वही है, दिलजीत दोसांझ. सबसे पहले इंस्पिरेशन कि मतलब एक होता है ना कि देखो मैं भी सीखूं, मतलब सीख छोड़ो, मैं भी पंजाबी हूँ, वो भी पंजाबी हैं, और पूरे पंजाब को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं. ठीक है, सर पे पगड़ी है, मेरी भी सर पे पगड़ी है, तो मैं थोड़ा सा अपने आप को रिलेट कर पाता हूँ कि यार, और जो वो भी जिस टाइप का म्यूज़िक कर रहे हैं, सेम टाइप का म्यूज़िक मैं ही कर रहा हूँ. तो मतलब एक होता है कि यार हाँ, अगर ये इंसान यहाँ से वहाँ पहुँच सकता है तो सेम चीज़ हम भी कर सकते हैं. तो मतलब सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए अभी तक वही है. और अगर आप इंटरनेशनली बात करो तो दो वेस्टर्न आर्टिस्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, एक तो
0: ओके
1: ब्रूनो
0: okay.
1: मार्स और एक है वीकेंड. इन दोनों का
0: ये
1: म्यूजिक
0: तो
1: मैं
0: एकदम
1: बहुत
0: दोनों ही
1: सुनता हूँ.
0: वाइब अलग होगी ना,
1: बिल्कुल
0: मतलब
1: बिल्कुल, ब्रूनो.
0: फ्यूजन और पार्टीज वाली वाइब आपको ज्यादा पसंद है.
1: हाँ, यस यस.
0: दिलजीत पाजी की आपने बात की है, गबरू तो बहरे ने भी मीठा बोलदा, नहीं तू तो फिर जट दा प्यार वली, एक गाना एक
1: क्या
0: दो कुछ हो जाए
1: बात
0: उनके लिए भी कुछ हो जाए ना.
1: उनके लिए.
0: हाँ
1: डायमंडा दे नाल तोड़ दो जिन्ना तेरा भार गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए. गल विच पाया 40 लाख बोलदा, डॉलर च 80 क 1000 गोरिए, गबरू ता वैरी ना भी मिठा बोलदा, नी तू ता फिर जट दा प्यार गोरिए.
0: क्या बात है, क्या बात है, एकदम पार्टी वाली
1: नहीं,
0: वाइब जो है बन गई है स्टूडियो में भी, बहुत ही कमाल. वैसे कहते हैं कि मतलब अगर आप पंजाबियों से बात कर रहे हैं ना खासकर, तो फिर खाओ पियो ऐश करो मित्रों, दिल कदे किसी तरह दुखायो
1: सही
0: ना.
1: बात है.
0: तो खाने
1: एग्जैक्टली,
0: पीने के शौकीन है, मतलब आपको दिल्ली का फूड पसंद है?
1: दिल्ली का बहुत
0: हाँ.
1: ज्यादा पसंद है. मैं
0: परहेज नहीं
1: एक
0: करते हम लोग
1: नहीं,
0: गले के लिए.
1: मैं बिल्कुल परहेज नहीं करता. हालांकि बोलते हैं लोग परहेज करो, बट मैं बिल्कुल नहीं करता. उसका रीजन ये है कि यार एक बहुत अच्छी फिलॉसफी है, अच्छा खाओगे तो अच्छा गाओगे, बस. और ये फिलोसफी मैंने सीखी है मेरे मेंटर, इंडियन आइडल के जो मेंटर है आनंद सर, उनसे.
0: वैसे कहते हैं ना आवाज
1: अच्छा
0: की दुनिया
1: खाओ.
0: में अगर आप हैं तो चाहिए
1: हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लेते हैं, मतलब जो चीज अच्छी लग रही है. फॉर एग्जाम्पल, आइसक्रीम भी नहीं खाते. कुछ सिंगर से बोलते हैं आइसक्रीम नहीं खाएंगे, मैं खा लेता हूँ. मुझे,
0: अच्छा,
1: हाँ, मुझे कुछ इतना फर्क नहीं
0: परफॉर्मेंस
1: पड़ता.
0: से पहले या एक रात पहले
1: नहीं, परफॉर्मेंस से पहले तो ऑब्वियसली नहीं यार, मतलब आधे घंटे
0: सेलिब्रेशन के लिए?
1: परफॉर्मेंस से आधे घंटे पहले से थोड़ा सा परहेज करो. मतलब ये है कि नॉर्मली आइसक्रीम भी खा लेता हूँ मैं, मतलब ऐसा ज्यादा बहुत तेल वाला खाना नहीं खाना, लेकिन बहुत तेल वाला जो बनाता है खाना, तो फिर तो वो तो सब, मतलब सबके लिए ही बेकार है. वो आपके लिए भी बेकार है, मेरे लिए तो है ही है, गले के लिए. तो हाँ, चिकन रोल हो गया, नॉन वेज तो कुछ भी दे दो, वेज भी दे दो,
0: आने दो
1: सब
0: है
1: कुछ
0: ना.
1: आने दो.
0: वो किसी ने पूछा ना पंजाबियों से कि सवेरे की करोगे, सवेरे रोटी खावांगे, शाम नो रोटी खावांगे, पाजी रात नो, रात नो पाजी सोवांगे, सारे दिन रोटी थोड़ी ना खाई जानी. तो खाने पीने के शौकीन तो हैं ही. लेकिन एक बात और कर लेते हैं हम, आपने बोला कि पंजाबी म्यूजिक की हमने बात की है, आपको लग रहा है आने वाले समय में वर्ल्ड वाइड पंजाबी म्यूजिक जो है वो कहर बरपा रहा?
1: आने आने वाले समय, वो तो अभी भी कर रहा है, देखो
0: राइट. हाँ.
1: अभी भी कर रहा है, लेकिन आने वाले समय मुझे लगता है कि बहुत, मतलब नॉट ओनली पंजाबी, जो इंडी जो जो इंडिया का पॉप म्यूजिक है, मतलब देखो पंजाबी तो ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड पहुंच चुका है,
0: राइट.
1: बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है. और तो एक चीज तो श्योर है कि आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंट म्यूजिक ही बहुत टॉप पे होने वाला है. पहले होता था ना कि चलो आज, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको. आज जैसे बॉलीवुड में कोई गाना गाना होता है तो कोई देखता नहीं है कि यार कोई मुझे वो, मतलब ये कोई XYZ जो भी डायरेक्टर है मुझे चांस दे दे, या मुझे ये चांस दे दे, वो चांस दे दे. आज कोई देखता नहीं. आज तो ये होता है कि सीधा अपने गाने बनाओ, अगर आप ले रहे हो, आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, वरना हमारे पास चैनल है, हम रिलीज कर देते हैं.
0: आप क्या एंजॉय करते हैं, प्लेबैक
1: मैं ये
0: सिंगिंग के भी ऑफर बहुत मिल गए होंगे आपको, या आपको
1: ऑफर्स,
0: लगता है
1: हाँ.
0: लाइव शोज ये ज्यादा चार्मिंग होते हैं?
1: नहीं, देखो सिंगर के लिए लाइव शोज भी इम्पोर्टेंट है, और सिंगर के लिए अपने गाने बनाना और अपने गाने रिलीज करना, अपना जो आर्ट फॉर्म प्रेजेंट करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बेसिकली. तो शोज भी इम्पोर्टेंट है और अपने गाने बनाना, वो भी इम्पोर्टेंट है. और अगर आपको प्लेबैक करनी है तो वो भी इम्पोर्टेंट है. लेकिन मेरा सीन ये है, मेरा सीन ये है कि अगर प्लेबैक मैं करूं, अगर कोई सामने से आके मुझे बोल रहा है कि यार मनराज ये करना है, मैं श्योर सर बिल्कुल करेंगे. और मैं कभी भी इस चीज़ के पीछे कभी नहीं भागूंगा कि लाइक मुझे प्लेबैक में मेरे को गाना चाहिए. मेरे सिर्फ दो ही डायरेक्टर बहुत फेवरेट हैं, मैंने बोला है पहले भी, एक है प्रीतम सर और एक है AR रहमान सर.
0: वाह.
1: तो अगर मैं दिल से, फॉर एग्जांपल, मुझे होगा ना कि यार मुझे प्लेबैक करना है इनके साथ, मतलब तो अगर थोड़ा सा वो आएगा ना कि यार प्लीज दे दो, तो वो इन दोनों के साथ ही आ सकता है, अदरवाइज नहीं. बिकॉज मेरा ये है कि अपने गाने मुझे करने हैं, कोई चांस देगा तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं मिलेगा तो ऑप्शन

0: लाइव
1: क्या है कि
0: शोज।
1: मेरे म्यूजिक को रिलीज करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। जो मेरा आर्ट है वो मैं गाने बनाऊंगा, क्योंकि म्यूजिक प्रोडक्शन में मैं ही करता हूँ, ठीक है, म्यूजिक कंपोजिशन कर लेता हूँ, हमारी अपनी जो है कंपनी है, तो सही है ना, क्या दिक्कत है, किसी की
0: बिल्कुल,
1: चांस की
0: जो
1: जरूरत
0: आए
1: थोड़ी है।
0: जो हो जाए वही बढ़िया। दिलजीत
1: एग्जैक्ट
0: पाजी के हम
1: बिल्कुल
0: बात कर रहे थे, अब वो मूवीज में भी आ गए हैं, आपको अगर मूवी का ऑफर आया तो यू विल गो फॉर इट?
1: मूवी का ऑफर, मूवी का नहीं पता, नहीं मूवी में मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है,
0: ओके
1: हालांकि मूवी के लिए गाने देने हैं तो उसमें मेरा इंटरेस्ट है, मूवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है यार।
0: चलिए, दो बड़े नाम आपने लिए, प्रीतम एंड श्री ए आर रहमान, उनका कोई फेवरेट गाना हो जाए।
1: ओ जरा से दिल में दे जगा तू, जरा सा अपना ले बना,

0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया,
1: बहुत
0: बहुत ही
1: सारे गाने हैं प्रीतम
0: खूबसूरत.
1: सर के यार, मतलब बता नहीं सकता मैं, सारे ही फेवरेट है मेरे तो।
0: ये ऑल टाइम है ना. और मौसम भी कुछ ऐसे ही हो रखा है,
1: हाँ
0: दिल्ली का वेदर कभी भी आपके बॉस या गर्लफ्रेंड के मूड की
1: हाँ
0: तरह बदल सकता है, लेकिन करवट
1: सही बात है।
0: जरूरली है. मौसम इतना शानदार है, इस मौसम को देखते हुए कोई गाना, बरसात के मौसम को देखते हुए, सावन को देखते हुए
1: अच्छा
0: कोई गाना.
1: बरसात को देखते हुए, देखो मेरा अपना ओरिजिनल गाना है तो मैं दूसरा क्यों कहूँ, है ना? ठीक है
0: इसे कहते
1: या,
0: प्रमोशन.
1: प्रमोशन का मौका नहीं छोड़ना चाहिए।

0: क्या बात हो जाए, बात तो बन ही
1: तो
0: गई
1: इसमें
0: है।
1: कवि कह रहे हैं कि तू और मैं साथ चले जब जाना बरसात हो जाए, और भीगे साथ अगर तो
0: लगता है
1: क्या
0: कवि
1: ही
0: ने
1: फिर
0: बात,
1: बात हो
0: हाँ क्या बात
1: जाए।
0: है, कवि ने सुन ली है हमारे मन की बात भी। वेल, मन की बात अगर हम करें, आपके दिल में बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। आपने जब शुरुआत की थी तो आपको लग रहा था कि मतलब मैं इंडिविजुअल आर्टिस्ट बनूं, लेकिन उसके बाद इंडियन आइडल, इंडियन आइडल ने आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आया? इंडियन आइडल क्या, किस स्तर पर आपको लेकर गया, और उसके बाद क्या चेंजेस आपने देखे लाइफ में?
1: इंडियन आइडल से देखो बहुत ही बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज आया लाइफ में, मतलब लाइफ में नहीं, मेरे म्यूज़िक जो मैं करियर की बात करूँ उसमें। क्योंकि क्या होता है ना कि आगे बढ़ने के लिए एक किक की ज़रूरत होती है, एक जो पुश मिलता है ना वो बहुत ज़रूरी होता है कि एटलीस्ट आप उस स्पेस में आ जाओ कि आप काम कर सको आगे, नॉट कि आपको फेम मिल जाए या आप पैसा कमा लो। नहीं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बहुत कंपटीशन भी है इसमें, इंडस्ट्री में, ठीक है, म्यूजिक लाइन में बहुत कंपटीशन है, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं और सब बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। तो मतलब यहाँ से उठ के एक इंडस्ट्री के अंदर आना और इतना फेम मिल जाना, इंडस्ट्री के लोगों तक पहुँचना, वो जो काम है ना वो काम इंडियन आइडल ने किया है मेरे लिए। बिकॉज आइडल से पहले लाइक हम यही देखते थे कि मतलब किसी को इंस्टा पे DM करना कि यार एक गाना रिलीज करना है, ये लेबल का कांटेक्ट चाहिए, फिर मतलब नंबर निकाल निकाल के कॉल करते थे कि ये लेबल चाहिए, ये चाहिए। अब क्या हो गया कि अब वो काम बहुत इजी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि अब आप हाई भी भेजोगे ना तो सामने से अच्छा रिप्लाई आ जाएगा कि हाँ सर क्या चाहिए आपको, बताओ, अवेलेबल। तो मतलब ये जो चेंज है ना, ये जो चेंज आया है, तो ये इंडियन आइडल की वजह से ही है।
0: क्या बात है।
1: क्योंकि आर्टिस्ट के लिए ना ये चीज़ जो फ्री फ्लोइंग जो चीज़ होती है ना, क्योंकि मेरे पास आइडिया है, अब मुझे जहाँ रिलीज़ करना है, कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ें एक मैं वो अकेला काम नहीं कर सकता।

0: गाने को चलाने के लिए बहुत सारे होते हैं, जैसे सिंगर तो हो गया, लिरिक्स राइटर हो गया, म्यूजिक कंपोजर हो गया, फिर कंपनी हो गई, फिर उसकी प्रमोशनल कंपनीज हो गई, कहाँ प्रमोट हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बहुत बड़ा टीम वर्क है एक। तो वो टीम वर्क साथ में बंदे अपने साथ जोड़ना, ठीक है, तो इतने अच्छे लेवल पे आके अच्छा सर्कल बनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तो ये जो काम किया है मेरे लिए, ये इंडियन आइडल ने किया है। हालांकि अभी कहानी, मेरा मानना ये है कि अब यहाँ से स्टार्ट है। आइडल ने तो पूछ दे दिया कि करो, मतलब आपको मैदान में छोड़ दिया है ना, आइडल ने आपको लाके मैदान में छोड़ दिया, अब तुम जितना कर सकते हो करो, ये है। अब मैं कितना कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी कैपेसिटी है, मैं कितना म्यूजिक बना के, मतलब सब मेरे ऊपर है। अब यहाँ से आप यहाँ से कितने बड़े बनते हो, अपने आप को संभालना है।
1: बहुत
0: तो
1: जरूरी है,
0: यस,
1: तभी
0: तो
1: एकदम चिल मोड ऑन है।
0: अब नहीं, क्या कह रहे हो, आराम आराम
1: हाँ,
0: तो बिल्कुल नहीं करना
1: क्या दिनचर्या रहती है अभी?
0: अभी के लिए। थोड़ा ये है कि हम ना एक साल से, जैसे क्या है कि एक साल से हम, हमारा रोज का रूटीन था, सुबह उठना है, पूरा दिन गाना है, पूरा दिन रिहर्सल्स हो रही हैं, फिर शूट पे जा रहे हो, मंडे टेक्निकल, ट्यूसडे को शूट हो रहा है, 2 दिन का शूट हो रहा है लगातार। शूट होने के बाद ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, चलो जी अगले शूट की तैयारी करनी है। तो एक साल से ये चल रहा था, गा गा के बॉडी भी मतलब हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, गला भी पूरा एग्जॉस्टेड है अभी भी। और एक मतलब उस स्पेस से निकल के यहाँ पे आके, फॉर एग्जांपल अपने होम टाउन आके, घर आके, मतलब जब आप बैठे होते हो ना, तो फिर सोचने का मौका मिलता है कि अब मुझे एज एन आर्टिस्ट क्या करना है। क्योंकि अभी एक साल तक बस वही था कि फिल्मों के गाने गा रहे हैं हम, ओल्ड सॉन्ग्स गा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जा करके सोचने का मौका मिल रहा है कि आगे क्या करना है, कैसे गाने बनाने हैं। तो ये थोड़ा माइंड भी
1: क्या
0: रिलैक्स्ड
1: चल
0: है
1: रहा है माइंड में?
0: थोड़ा
1: व्हाट्स
0: वोकल।
1: नेक्स्ट?
0: हाँ, नेक्स्ट ये है कि नेक्स्ट मैं अभी EP प्लान कर रहा हूँ।
1: ओके,
0: हाँ, EP में 5 गाने होंगे, एंड वो मैं रिलीज करूँगा सितंबर में। उसमें देखो कि आई एम ट्राइंग कि अच्छे अच्छे आर्टिस्टों के साथ, जितने भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं इंडस्ट्री में, सबके साथ कोलैबोरेट हो। मतलब उस EP में नहीं, EP के आगे भी एल्बम करनी है, बट अभी सितंबर में एक मेरा प्लान है कि EP रिलीज करूँ मैं, 4 से 5 गाने की। मतलब बेसिकली आपको बताया ना कि मैं चाहता हूँ कि मेरा ओरिजिनल म्यूजिक लोग सुने, ठीक है, तो उसके लिए मुझे ही काम करना है। और जितना जल्दी मैं सोच रहा हूँ कि आइडल से अभी भी निकला हूँ, तो लोग थोड़ा जानते हैं, इतना प्यार दे रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि फिर मैं नहीं अगर एक्टिव रहूँगा, तो फिर धीरे धीरे फेड हो जाता है आर्टिस्ट। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए यही है कि बहुत सारे गाने निकालने हैं। सितंबर में EP करूंगा, फिर उसके बाद 4-5 महीने बाद फिर एल्बम कर दूंगा, फिर मतलब बीच बीच में सिंगल्स आते रहेंगे, शोज भी होते रहेंगे
1: लाइव
0: और
1: शोज,
0: लाइव शोज होते रहेंगे।
1: आई एम श्योर अभी ऑफर आ रहे होंगे काफी सारे।
0: हाँ जी, ऑफर तो आ रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं टूर पे भी जा रहा हूँ बाहर, अक्टूबर में।
1: ओ, आउट ऑफ इंडिया?
0: यस यस, आउट ऑफ इंडिया अक्टूबर में। उस पर USA, कनाडा, वेस्ट इंडीज, इन सब जगह पे टूर है। ये 1 महीने का टूर है। मतलब ऐसे ही बहुत सारे हैं, फिर कुछ प्राइवेट इवेंट्स भी हैं, कॉलेज फेस्ट भी है, चलता रहेगा ये सब। तो आर्टिस्ट की लाइफ में यही तो है, गाने बनाने, शो करने हैं।
1: कहते हैं ना, हम सब तो रंगमंच की कठपुतली हैं, हर किसी को अपना
0: हाँ,
1: किरदार निभाना
0: लोगों को एंटरटेन करने का मौका नहीं छोड़ना है बस, जैसे हो, चाहे वो इवेंट हो, चाहे वो फेस्ट हो, चाहे गाने बनाने के थ्रू हो, बस लोगों को एंटरटेन करना है। क्योंकि लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं।
1: आजकल। वैसे देखे ना तो यंगस्टर्स काफी जल्दबाजी में रहते हैं, खासकर जितने भी एस्पायरिंग सिंगर्स हैं। हर कोई सिंगिंग करना तो चाहता है, लेकिन वो एफर्ट, वो कितना कुछ समय लगता है, कितना इन्वेस्टमेंट लगता है, कितने आपको तैयारियां करनी पड़ती है उसके लिए, ये बहुत कम हो गया है लोगों में। यंगस्टर्स से कुछ कहेंगे इस बारे में?
0: मैं यही बोलूंगा, देखो पहले तो मैं बोलने से पहले अपनी एक स्टोरी बताता हूँ, शायद वो कुछ लोगों को मोटिवेट कर जाए काम करने के लिए उनके। वो ये है कि ऐसा नहीं है कि मैंने पहली बार ऑडिशन दिया आइडल का और मैं पहुंच गया। नहीं, मैंने इससे पहले भी 2-3 बार, मैंने इससे पहले 3 बार तो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ। उसके पहले भी मैंने ऑनलाइन ऑडिशन दिया है जिसमें वीडियोज भेजते हैं। तो ये है कि कभी भी रुको मत। अगर आप फेल हो रहे हो, तो आप देखो कि आप क्यों, आप अगर आज ऑडिशन में रिजेक्ट हो गए, तो आप क्यों रिजेक्ट हुए हो, किस बेसिस पे आप रिजेक्ट हुए हो। अगर कुछ आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आप सामने वाले को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसने मुझे क्यों नहीं सिलेक्ट किया। आप अपने ऊपर काम करो कि हो सकता है ये कमी हो, शायद मैं इसको मुझे सुधारना चाहिए। अगर मेरे अभी सुर कच्चे हैं, तो मैं 1 साल और रियाज करूंगा, सुर पक्के कर लूंगा, दोबारा ऑडिशन में आऊंगा। बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं। तो मैं जितनी बार भी रिजेक्ट हुआ हूँ, मुझे उतनी बार अलग अलग चीज़ें समझ में आई हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे सुर पक्के करने हैं, तो हाँ मेरा रियाज चालू, और रियाज मतलब अगर मैं 2 घंटे रियाज करता हूँ, तो 4 घंटे का चालू, ठीक है। अगर मुझे गाने नहीं याद या मेरी प्रेजेंटेशन वीक है, तो उसके ऊपर काम करना। क्योंकि ये सब जब सारी चीजें आप करते रहते हो उसके बाद ही

0: आप अपने अंदर मास्टरी लेके आओगे ना, तो जितनी बार आप फेल हो रहे हो आप उससे डरो मत, और कभी भी ट्राई करने से मत डरो। और बस मेरी यही है कि जितने भी यंगस्टर्स हैं जो भी म्यूज़िक कर रहे हैं, उनको मेरा यही उन उनको मेरी यही सलाह है कि म्यूज़िक को ना, मतलब अगर आपका पैशन है, पहले आपको म्यूज़िक को ना रिस्पेक्ट करना है। म्यूज़िक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं क्लासिकल म्यूज़िक बोलूँ, वेस्टर्न म्यूज़िक, मतलब नॉर्मली म्यूज़िक की बात कर रहा हूँ, इसमें सब कुछ है, वेस्टर्न भी, क्लासिकल भी, रॉक भी, एवरी जॉनर ऑफ म्यूज़िक, सैड हो, रोमांटिक हो, म्यूज़िक की रिस्पेक्ट करो पहले। और साधना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपने एक गाना सुना और आपने ऑडिशन में जाके परफॉर्म कर दिया, फिर बोलो अरे यार मैं तो अच्छा गा रहा था, इन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया। बट क्यों? क्या? क्योंकि जो आपको जज करने बैठे हैं ना, वो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े गुरु हैं। वो आपको बोलेंगे नहीं कि यार तूने ये चीज़ गलत कर दी, नहीं। और वो इसीलिए नहीं बोलते, वो यही चाहते हैं कि इसको खुद समझ में आए कि ये क्या गलती कर रहा है। क्योंकि सारी ज़िंदगी कोई आपको हाथ पकड़ के नहीं चलाएगा ना, आपको वो खुद समझना है कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो इसके लिए अपने ऊपर बार बार, एक होता है ना ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग भी अगर इंसान सही जगह करे ना, तो वो काम, मतलब वो फिर अच्छी होती है।
1: वो तो हम सब करते हैं, लेकिन जब आप
0: हाँ
1: ओवर थिंक करते थे आपके दिमाग में कौन सा गाना चलता था? जब मनराज निराश हो जाते थे तो
0: मैं ओवर थिंक
1: सुनना चाहेंगे
0: हमेशा
1: हम। हाँ
0: इसी में करता था कि यार मुझे अब क्या करना है, क्या मैं ये कॉम्पोजिशन ऐसे कैसे गाऊं, इसमें कौन सी फील से गाऊं, मतलब मैं ये सोच रहा था। मतलब लोग ओवर थिंक करते होंगे, हाय इसका ये हो गया, उसका वो हो गया, अरे वो नाराज हो गया, या ये वो हो गया। मैं ये सब सोचते, मैं कर नहीं, मैं गाने में मुझे ये परफॉर्म करना है, मैं इसको ऐसे करूँ या वैसे करूँ, बस ये चलता रहता था। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपके लिए, ये चीज़ करो। और गाना,
1: वो गाना ऐसा रहता है ना हमारी लाइफ में जो हम गुनगुनाते हैं लूप में, और हमें
0: लूप
1: लगता है
0: में,
1: कि हाँ मतलब कि अब हार गए हैं, थक गए हैं, लेकिन फिर भी एक दिन तो आएगा जब जीत जाएंगे, समथिंग लाइक दिस।
0: हाँ मैं एक बताता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेंज है मेरे लिए। मैं कभी ऐसा, कोई मेरा मोटिवेशनल सॉन्ग नहीं है किसको कि अगर मैं लो फील कर रहा हूँ या कुछ फील कर रहा हूँ तो मैं ये वाला गाना गाऊँ, पर्टिकुलर नहीं। मैं जब भी लो फील कर रहा होता हूँ ना, तो मैं सिर्फ म्यूज़िक ही सुनता हूँ। म्यूज़िक मतलब कि मैं गाने चला के साथ में गाने गाता रहता हूँ, 1-1.5 घंटा मैं खुल के गाने गाऊँगा। तो क्या होता है फिर, वो जो 1-1.5 घंटे के अंदर ना, वो लो वाले एंगल से बाहर आ जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, आपकी लिस्ट में प्रायोरिटी पे कौन सा गाना रहता है सबसे ऊपर, टॉप पे?
0: सबसे ऊपर टॉप पे, हाँ टॉप पे सबसे पहले जो मैं गाना वो मैं सुनता हूँ, मतलब वो काफ़ी मेरे से जुड़ा भी हुआ है, और बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस गाने की। एक तो मैं वो गाना है कि बनू दुनिया दा बाय गुरदास मान साहब एंड दिलजीत दोसांझ
1: हो जाए
0: साहब।
1: कुछ लाइनें हो जाए।
0: तो कुछ भी होता है ना, फॉर एग्जाम्पल शो भी कर रहा हूँ मैं, तो शो की भी स्टार्टिंग में यार फोक गाना, तो इससे बेटर कोई गाना है ही नहीं। और इतना इतना अच्छा है इस गाने में बोला गया है कि यार की बनो दुनिया दा सच्चे पातशाह वाहेगुरु जाने। मतलब कि एक बेसिक सिनेरियो होता है ना कि यार किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, सिर्फ उसको पता है। तो उस पे छोड़ो, अच्छा काम करते रहो, सबकी रिस्पेक्ट करो, जस्ट वन लव एवरीवन,
1: वन लव, और हम
0: एक
1: भी
0: प्यार है, प्यार
1: ढेर
0: करो,
1: सारा प्यार आपसे
0: सब
1: करते
0: ऊपर
1: हैं,
0: छोड़ दो।
1: लेकिन
0: हाँ
1: लाइनें हो जाए
0: लाइनें
1: कुछ।
0: बिल्कुल
1: या
0: बिल्कुल।

0: क्या बात है, जो तेरे नसीब का है वो तेरे कोल ही आएगा। ओनू हर रोज पौंड दी फरमाइश नगर।
1: क्या बात है।
0: ऑल इंडिया रेडियो पे पहले भी आया या फर्स्ट टाइम परफॉर्म
1: नहीं,
0: कर रहे हैं यहाँ पर?
1: दिस इज माय फर्स्ट टाइम।
0: ओके, कैसा लग
1: यस,
0: रहा है, कैसा फील
1: बहुत
0: हो रहा
1: अच्छा
0: है?
1: लग रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आप लोगों ने इनवाइट किया। एंड मतलब ये भी आर्टिस्ट की

0: सपनों में होता है कि यार मैं पॉडकास्ट में जाके बैठूं, हाँ मस्त
1: हाँ
0: होता है, अच्छा लग रहा है बहुत। मतलब क्या होता है कि इतने सारे लोग प्यार करते हैं और इतना, मतलब नो वर्ड्स, दिस इज
1: लोग
0: बियॉन्ड वर्ड्स।
1: आपको आई एम श्योर के मतलब अनफिल्टर देखना चाहते हैं ना, कि मनराज को हमने स्टेज पे तो देखा है,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन स्टेज के पीछे मनराज क्या है, मनराज क्या क्या पसंद करता है। खाने में तो आपने बता दिया, सिंगिंग में भी आपने बता दिया,
0: मेरे
1: किन्हा
0: को, मैं बताऊं तो मुझे मजा आता है जा सबसे ज्यादा फन करने में भाई। बस अपने में रहो, मजे करो। मतलब क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल जैसे शो चल रहा है, शो चल रहा है और कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, आपको ऐसे ही बैठना है, ये कैमरा लगा हुआ है, ऐसे पीठ सीधी करके बैठो ऐसे, मतलब फिर थोड़ा सा ऐसे हो जाओ, अंदर से डायरेक्टर है भाई यार ऐसे फिर से बैठो, तो मतलब जब ये होता ना कट हो गया फिर, हाँ फिर अपने मस्ती में बैठे हुए तो वो वाली चीज है, मतलब अपने में रहना बिल्कुल पसंद है, बैक स्टेज वही करने में मजा आता है। खाओ, सबको प्यार बांटो, खाओ, और सबसे इम्पोर्टेंट है म्यूजिक।
1: वो पार्टी वाली वाइब भी होती है कभी कभी,
0: हाँ वो
1: दिल्ली से
0: गाने
1: वो
0: वाले,
1: लड़का और पार्टी ना करे, ऐसा हो नहीं सकता
0: देखो पार्टी हम कर नहीं
1: मतलब।
0: पाए क्योंकि हमें अलाउड नहीं थी, बस पार्टी करना किसको नहीं पसंद। बट
1: मतलब पार्टी कहने का मतलब तात्पर्य मेरा ये है, थोड़ा सा नाच गाना हो गया।
0: मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे थे सारे कंटेस्टेंट्स, तो रूम में क्या करते थे ना हम, रोज रात को जैसे सुबह प्रैक्टिस, सुबह से लेके 10 बजे से लेके रात तक प्रैक्टिस चली, प्रैक्टिस खत्म, प्रैक्टिस होते के बाद ही हम सारे अपने आप को रिफ्रेश करने एक रूम में इकट्ठे होते थे, और वहीं गाने वाने चला के उनो खेल रहे हैं, ठीक है, डाइट कोक पी रहे हैं, मंगा रहे हैं मस्त, अपना मतलब खाना पीना चल रहा है उधर, सब मस्ती कर रहे हैं, गाने बजा के डांस कर रहे हैं, जिसको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी है वो डांस कर रहा है, कोई नींद से उठ के आ गया मस्त, कह नहीं यार मेरा सर दर्द हो रहा है, मतलब ये है कि
1: चिल मोड आ
0: सारी
1: गया।
0: रिहर्सल के बाद सब जब एक साथ बैठते थे ना तो चिल मोड हो जाता था, मतलब वो सारे पूरे दिन की थकान निकल जाती
1: ये
0: थी।
1: कितना टाइम पीरियड रहता है, मतलब एक शो से पहले कितना समय आपको मिलता है प्रिपेयर करने के लिए?
0: एक शो से पहले जैसे जिस दिन शूट होता है उसके एक दिन पहले टेक्निकल होता है, तो टेक्निकल पे पूरा दिन हमारा शूट होता है, टेक्निकल शूट हो गया 24 घंटे, मतलब नॉट 24 घंटे, जैसे सुबह 9 बजे से स्टार्ट हुआ, रात को 11 बजे तक टेक्निकल शूट चल रहा है, फिर उसके अगले दिन दोबारा 9 बजे स्टार्ट हुआ, 11 बजे शूट चल रहा है, और मंडे ट्यूसडे शूट होता है, सैटरडे संडे वो टीवी पे टेलीकास्ट होता है, तो जैसे ही हमारी एक शूटिंग खत्म हुई, एक शूटिंग के बाद नेक्स्ट जो हमने गाना होता है वो शूटिंग खत्म होने के बाद ही हमें गाने मिल जाते हैं कि आपको अगले वीक ये गाने गाने हैं और कल से तुम्हारी दोबारा बैंड रिहर्सल। मतलब शूट अगर रात को 12 बजे ख़त्म हुआ तो हमें 11-12 घंटे का सब में रेस्ट ले लिया, और आई थिंक इनफ होता है इतना रेस्ट, 11-12 घंटे का रेस्ट लेके सो के आराम से, उसके बाद फिर अगले वीकेंड पे हमने क्या क्या करना है उसकी मीटिंग चालू, फिर सेम प्रोसीजर वही लूप में चलता रहता है, थीम्स चेंज होती रहती हैं, नेक्स्ट वीक ये आर्टिस्ट आ रहे हैं तो इनके गाने हम गाएंगे, नेक्स्ट वीक हम प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा जैसे आशा भोसले जी को हमने करना है सेलिब्रेट करना है तो वो हम गाएंगे, फिर ललता, फिर उसके बाद लता मंगेशकर जी का वो आगे से, मतलब कि शूट खत्म होते कि 1 घंटे बाद ही हमें नई लिस्ट मिल जाती थी कि ये हमने अगले वीक गाना है।
1: मस्ती चलती जा रही है बस।
0: हाँ
1: और जब मस्त मौला हो जाते हैं, आपके दिमाग में कौन सा ऐसा गाना आता है? इसलिए मैंने वो वाइब पूछा था आपसे।
0: मस्त मस्त मौला होके तो
1: मतलब
0: यार
1: एकदम कि अब कोई फिक्र ही
0: मैंने
1: नहीं।
0: बोला मेरे को तो दोनों ही सिचुएशन में मैं गाने ही गाता हूँ,
1: हाँ, कौन सा है वो
0: और
1: गाना?
0: ऐसा कुछ मतलब वो नहीं है कि मैं एक यही मतलब पर्टिकुलर एक यही सॉन्ग गाता हूँ मैं, ऐसा नहीं है कुछ भी, मतलब ये होता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंगली क्या मैं सबसे ज्यादा गाना सुन रहा हूँ तो वही गा देता हूँ।
1: हाँ तो एक हो जाए ना कुछ लाइन। एनी पार्टी सॉन्ग।
0: गाना तो गाना पड़ेगा है, पान पुदीना देखा नाक्का नागीना देखा चिकनी चमेली देखी चिकना कमीना देखा चांदने चिटर होके चीट किया तो

0: जाने ना, जिद पकड़ के खड़ा है कमबख्त छोड़ ना जाने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना माने ना। बदतमीज दिल बदतमीज दिल बदतमीज दिल, माने ना।
1: क्या बात है, हम भी नहीं मान रहे हैं बैक टू बैक। चलिए, इंडियन आइडल में आपने ढेर सारी परफॉर्मेंसेस दी, आपका फेवरेट कौन सा था? सबसे फेवरेट, जो आज
0: सबसे
1: भी सबसे टॉप पे रखेंगे आप, कि इससे बेस्ट नहीं हो सकता।
0: मतलब बेस्ट मैं तो यही

0: बोलूंगा कि मैंने जो अपना गाया है बिल्कुल 100% देख ही गाया है, बट कुछ गाने मतलब नॉट एक, कुछ गाने ऐसे हैं जो बहुत मेरे फेवरेट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सबसे पहला ऑडिशन, तेरी यादों में खोया रहता हूँ, वो हो गया। उसके बाद गाना कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे, तो वो और एक एपिसोड में दलेर मेहंदी पाजी भी आए थे, उन्होंने गाया था हो गई तेरी बल्ले बल्ले हो जाए।
1: ये
0: मतलब
1: तो
0: तो क्या होता है ना, मैं आपको
1: हाँ
0: बताऊं, जब थीम चल रही होती है ना उसके बीच में जब ऐसे गाने गाने को मिलते हैं तो फिर उसकी एनर्जी अलग ही होती है। मैंने आपको बताया थीम चल रही थी 60s 70s 90s, सेलिब्रेटिंग आशा भोसले जी, सेलिब्रेटिंग लता मंगेशकर जी, सेलिब्रेटिंग किशोर कुमार जी, सेलिब्रेटिंग रफी साहब। तो उस जोन से निकल के जब ये अपने जोन में आने का मौका मिलता है ना तो फिर वो अलग एनर्जी, इसलिए ये सब मेरे फेवरेट हैं। हो जाएगी बल्ले बल्ले, बदतमीज दिल, और जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले ओले, तो ये सब जब गाने का मौका मिलता तो फिर वो सी मेरे सारे ही फेवरेट हैं।
1: ठीक है, टाइम फॉर द रैपिड फायर। सारे सवालों के सही जवाब आपने दिए हैं, और क्या कहूँ, कॉन्वर्जेशन बहुत कमाल का रहा है। चलिए, एक शब्द में खुद को डिस्क्राइब कीजिए, वन वर्ड,
0: फियरलेस।
1: फियरलेस।
0: वैसे
1: नेक्स्ट इज लता मंगेशकर या आशा भोसले।
0: आई पिक आशा भोसले जी।
1: ओके, अरिजीत सिंह या सोनू निगम। जल्दी
0: अच्छा,
1: जल्दी, रैपिड फायर है सर
0: अरे यार
1: ये।
0: अरिजीत सिंह।
1: ओके चलिए, वेरी गुड। स्टेज शो या फिर स्टूडियो रिकॉर्डिंग,
0: स्टूडियो रिकॉर्डिंग।
1: सबसे पसंदीदा राग कौन सा आपका?
0: राग राग राग राग राग दरबारी
1: ओके, पसंदीदा खाना।
0: नॉनवेज।
1: ओके, एक ऐसा गीत, एक ऐसा गाना जो आप कभी भी गा सकते हैं, कभी भी गुनगुना सकते हैं, 24/7, सोते सोते भी उठा दे तो आप कहेंगे ये गा सकता हूं मैं।
0: कीबोर्ड दुनिया था।
1: ओके, एक लाइन के साथ, इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम।
0: ओ की बनू दुनिया दा सच्चे पातशाह वा गुरु जाने, की बनू दुनिया दा है अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी, हाय तारे आवे तेरी जुगनी, साई बोदा वाले आवे जुगनी, अल्लाह बिस्मिल्ला तेरी जुगनी
1: क्या
0: हो।
1: बात है, अगर आपकी लाइफ पे कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल क्या होगा?
0: मेरी लाइफ पे अगर कोई फिल्म बनाई जाए तो उसका टाइटल होगा
1: दमन राज, मन पे राज करने वाला है, कुछ और, एनीथिंग, जो भी माइंड में आ रहा
0: हार्ट थ्रोब,
1: हो।
0: हार्ट थ्रोब।
1: ओके, अगर आपको आज अपने बचपन वाले वर्जन से मिलने का मौका मिले मनराज, तो आप उससे क्या कहना चाहेंगे कि हमने कर लिया, या कुछ और बाकी अभी?
0: मैं उससे यही बोलूंगा कि थैंक यू सो मच ये सब सपने देखने के लिए, बिकॉज नहीं देखता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता।
1: क्या बात है, एक मैसेज हमारे सारे लिसनर्स के लिए, जो आकाशवाणी ऑडियंस है उनके लिए कुछ।
0: मेरा मैसेज ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ बैठा हूँ, और लोग इतना प्यार दे रहे हैं तो आप सबके प्यार की वजह से ही हुआ है ये सब, हार्ट थ्रॉब, ड्रीम बॉय। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे जितने भी एल्बम्स आएंगे, जितने भी ईपीज आएंगे और जितने भी शोज होंगे, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा आप लोगों को एंटरटेन करने में, और आप लोग भी अपना प्यार देने में कोई कसर मत छोड़ना। थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे द आकाशवाणी पॉडकास्ट। इस कार्यक्रम का विजुअल वर्जन आप देख सकते हैं द आकाशवाणी पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल पर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में रिकॉर्ड किया गया और दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: ஆகாஷ்வாணி புதுச்சேரி, எஃப்எம் ரெயின்போ புதுவை 102.8, நேரம் 9:54.
4: எஃப்எம் ரெயின்போ 102.8, இசையோடு என்றும் நீங்கள்.
5: உங்கள் நேர்த்தியான கட்டமைப்பு இனிதை தொடங்கட்டும். வாஸ்து நன்னாளில் பூமி பூஜை செய்யும் அனைவருக்கும் அம்மன் டிஆர்ஒய் நல்வாழ்த்துக்கள்.
6: அம்மன் டிஆர்ஒய் டிஎம்டி கம்பிகள் கால் நூற்றாண்டின் அடையாளம்.
3: ராம் தங்கநகை மாளிகையின் சூழல் அறிவோம் நாளை காலை 6:55 கேட்கலாம்.
5: உங்கள் நேர்த்தியான கட்டமைப்பு இனிதை தொடங்கட்டும். வாஸ்து நன்னாளில் பூமி பூஜை செய்யும் அனைவருக்கும் அம்மன் டிஆர்ஒய் நல்வாழ்த்துக்கள்.
6: அம்மன் டிஆர்ஒய் டிஎம்டி கம்பிகள் கால் நூற்றாண்டின் அடையாளம்.